नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहले कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार महापुरुषों का चित्त समृद्धि के समय पुष्प के समान कोमल हो जाता है, किंतु वही चित्त संकट के समय पर्वत शिला के समान सुदृढ़ हो जाता है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 197। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। इसका पहला भाग आज प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहम, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। भूले बिसरे गीत सुबह 7 से 7:30 से हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शेफाली शाह पर। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी। संपादन सहयोग काजल भद्र की, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 और रात्रि 11 सुनेगा चित्रपट संगीत। सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम मैटिनी शो। दिन में 12 से हिंदी समाचार। 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल। सुरीला सफर ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 से। दोपहर 2 से त्रिवेणी। दोपहर 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे।

दोपहर 3 बजे से मन चाहे गीत, दोपहर 2:30 से सुनिएगा नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक विजय माल, लेखन रवि शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत अभिनेता लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत सुन सकेंगे, संपादक सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छायागीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनवाएंगे आपको तराने नए पुराने। झरोखा सुनेगा शाम 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन, शाम 7 बजे से आपको सुनवाएंगे विशेष जयमाला, ये प्रस्तुत कर रही हैं अभिनेत्री नरगिस, इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकेंगे। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा, रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा सुनो कहानी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र का चौथा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चितलोक रात 8:15 से आपके लिए रात 9 बजे से, और 10 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम छाया गीत, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, रात 10:10 से आपको सुनाएंगे ढलती जाए रात।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 197।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशल क्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

0: कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं। श्रोताओं, आज की संगीत सरिता कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: दोस्तों नमस्कार, और संगीत सरिता की इस कड़ी में आपका स्वागत है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के रागों के बारे में रोचक बातें आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो आज का विषय है राग अमृतवर्षिणी। अमृतवर्षिणी का मतलब हुआ अमृत की धारा या वर्षा। जब देश में सूखा पड़ जाए और पेड़ पौधे और खेत सब सूख रहे हों, तब अगर बारिश होने लगे तो उस वर्षा को अमृत ही कहना उचित है, क्योंकि वर्षा से पेड़ पौधे पुनः जीवित हो उठते हैं। अमृतवर्षिणी राग द्वारा ऐसा ही हुआ था, ऐसा कहा जाता है। श्रोताओं, आपको याद होगा कि तानसेन के बारे में भी ऐसी ही एक कहानी प्रचलित है। तानसेन ने दीपक राग गाकर ज्वाला उत्पन्न किया था और उस आग को बुझाने के लिए मेघ राग को गाना पड़ा। बिल्कुल उसी तरह कर्नाटक संगीत के एक महान वाग्यकार और कंपोजर मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने भी अमृतवर्षिणी राग गाकर वर्षा उत्पन्न की थी, ऐसा कहते हैं। यह घटना करीब 200 वर्ष पहले की है, जब त्यागराजर और दीक्षितर जीवित थे। कहा जाता है कि मुत्तुस्वामी दीक्षितर एक बार दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में एटाईपुरम से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि पूरे प्रांत में सूखा था और खेत सब मुरझा गए थे। लोग भूख से पीड़ित थे और पानी की कमी थी, और इस हालत को देखकर दीक्षितर को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने उसी क्षण सफर में ही संस्कृत भाषा में एक कृति की रचना की, जिसके शब्द हैं आनंदामृत कृषिणी अमृत वर्षिणी हरादि पूजिते शिवे भवानी। मतलब भवानी की प्रशंसा में है। इस कृति में देवी भवानी का वर्णन है और कृति के अंतिम पंक्ति के बोल हैं अमृतेश्वरी सलिलम वर्षय वर्षय वर्षय, अर्थात देवी पानी बरसाओ बरसाओ बरसाओ। इस रचना को गाते ही आकाश में न जाने कहीं से घने बादल घिराए और सलिलम वर्षय वर्षय कहते ही जोर से बारिश होने लगी। लोग अत्यंत खुश हुए और उनकी वेदना भी दूर हो गई, खेतों में पानी भर गया। राग अमृत वर्षिणी का परिचय अब देती हूँ। यह एक औड़व औड़व राग है, अर्थात आरोह अवरोह में 5 स्वर लगते हैं। इस प्रकार

स्वर हैं शुद्ध गांधार, तीव्र मध्यम और शुद्ध निषाद। यह राग चित्रांबरी नाम का 67वां मेलकर्ता का जन्य है। राग सीधा साधा, सरल और अत्यंत लोकप्रिय है और विस्तार भी आसानी से हो सकता है। इसे एक आधुनिक या मॉडर्न राग कह सकते हैं क्योंकि यह करीब 200 वर्षों से ही प्रचलित है। इस राग में बहुत कम बंदिशें मिलते हैं और उनमें सबसे प्रसिद्ध कृति दीक्षितर द्वारा रचित आनंदामृता कृष्णी है। तो अब सुनिए अमृतवर्षिणी राग में इस कृति को, जो आदि ताल में निबद्ध है।

अब सुनिए, इसी राग को आधुनिक पद्धति में फ्लूट पर पेश किया गया है। जैसे मैं कह रही थी कि ये आधुनिक राग है, प्राचीन राग नहीं है, तो अमृतवर्षिणी राग को सुनिए। बांसुरी पर कलाकार हैं रूपक कुलकर्णी।

0: पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं। इसे प्रस्तुत कर रही है शकुंतला नरसिम्हन। कल इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप सुनेंगे हमारे इसी संगीत सरिता कार्यक्रम में।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजों में पतंगा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।
1: बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

आइए अब सुना जाए राजा मेहंदी अली खां का लिखा और एस डी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ है गीता दत्त की, फिल्म का नाम दो भाई।

0: एक खुशखबरी, कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं दर्द फिल्म का ये गीत।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वक्त हो गया है छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आइए सुने लाहौर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में लाहौर फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे श्याम सुंदर। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं नूरजहां की आवाज में जुगनू फिल्म का ये गाना।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश राजकुमारी की आवाज में महल फिल्म से। गीतकार हैं नक्शब जारजवी और संगीतकार हैं खेमचंद प्रकाश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में मेरे सनम। इस फिल्म के गाने के साथ मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं ओ पी नैयर।

अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा है खयाम ने। फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं।

बस आँखों की बुझा लूं तो चले जाइएगा, ठहरिए हो शुभ आलू।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में पूर्णिमा फिल्म का गाना। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में वक्त फिल्म का गाना। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से संवारा है रवि ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में वक्त फिल्म का गाना। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के नमस्ते जी, जहां इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अनजान के बोल और तर्ज बनाई है जी एस कोहली ने।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीतकार हैं कमर जलालाबादी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम जौहर महमूद इन गोवा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
6: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जांचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
4: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और

0: वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, है।

0: प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज लाखों करोड़ों की भीड़ में भी कई बार इंसान अपने को अकेला पाता है। आधुनिकता के इस दौर में छोटे होते जा रहे परिवार के कारण अकेलेपन की समस्या आम बात हो गई है। ऐसे में अगर हम अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे तो हमारा अकेलापन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति बन जाएगा। देखिए ना, चांद रोज रात को आकाश में अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ता है, बिना थके, बिना हारे।

अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के अलावा अकेलापन दूर करने का एक सरल उपाय है, अपने जीवन में किसी को अपना हम ख्याल बना लें, हम सफर बना लें। ऐसा प्रयास करके तो देखें, जिंदगी एक नए रूप में, नए रंग में मुस्कुराती नजर आएगी।

लेकिन आज के जीवन की आपाधापी में कोई आपका साथ न दे, कोई आपकी पीठ न थपथपाए, आपकी सफलता पर तालियां न बजाए, तो फिक्र की क्या बात है। कहते हैं ना,

दोस्तों, जब हम सकारात्मक सोच के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अकेलापन हमारी शक्ति बन जाता है। आज त्रिवेणी का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल।

0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी के लिखे गीत के साथ, जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म का नाम भाग मिल्खा भाग।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंद।

0: का कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में किरण कोत्रियाल का लिखा और राजू सिंह का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम प्रेम का गेम। बोले आई वांना फॉल फॉर लव।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में यारियां फिल्म का गाना लमी थोड़ा, और इरशाद कामिल थे गीतकार और संगीतकार प्रीतम। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं अमित नागपाल, सुजीत शेट्टी और रणवीर कपूर की आवाजों में बेशरम फिल्म का ये गाना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुनते हैं मीत ब्रदर्स अंजन और स्टीफन बेन की आवाजों में शिमला मिर्च फिल्म का गाना कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स अंजन की है तर्ज़।

द्रविड़ भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

अभी आप सुन रहे थे रांझना फिल्म का गाना है, आवाजें थी मधुश्री आंचल सेठी और सखियों की, रियाज कामिल ने लिखा था इसे और संगीत से संवारा था एआर रहमान ने। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं जॉनिटा गांधी की आवाज में दंगल फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

दोस्तों, आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन दिवस। इसका उद्देश्य महिलाओं में प्रसव के दौरान होने वाली गंभीर बीमारी प्रसूति फिस्टुला के प्रति जागरूकता फैलाना तथा इसके उन्मूलन के लिए प्रयास करना है। इस रोग के कारण महिलाओं को शारीरिक पीड़ा के साथ साथ सामाजिक उपेक्षा और मानसिक कष्ट भी सहना पड़ता है। ये समस्या विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है जहां उचित स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी होती है। समय पर चिकित्सा सुविधा, सुरक्षित प्रसव तथा महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता से इस रोग को रोका जा सकता है। इस वर्ष की थीम है हर हेल्थ इज अ राइट, इन्वेस्ट इन एंडिंग फिस्टुला एंड चाइल्ड बर्थ इंजरीज। तो दोस्तों, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको पालोमे की आवाज में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं।

पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इस मामले के अंदर। कोई भी इंसान को बिना ड्राइविंग लाइसेंस लिए गाड़ी अलाउ नहीं करनी चाहिए। आप बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाने दीजिए, उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। पेशेंट के कोर्ट केस बन जाते हैं, पेशेंट को बहुत भारी जुर्माना दे देना पड़ता है,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: लागत से होने वाले
1: विविधता, ये हमें भोजन, दवाइयाँ, शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और जलवायु को संतुलित रखने जैसे अनगिनत संसाधन प्रदान करती हैं। भारत की भूमिका, भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संधि का हिस्सा होने के नाते भारत ने अपने प्राकृतिक संसाधनों और ज्ञान की रक्षा के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 भी लागू किया है। वर्तमान में दिल्ली सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। यूपी के बांदा में तो रिकॉर्ड पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन तक यही हाल रहने वाला है। ऐसे में चर्चा हो रही है नौतपा गर्मी की। आखिर क्या है, कब कब होता है, इसके कारण क्या है और बचने के उपाय, सावधानियां क्या होंगी, इन सब पर जानने के लिए सुनते हैं प्रोफेसर कर्नल संजय श्रीवास्तव से कमल किशोर की ये बातचीत।
2: आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी को। आप क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं और आप लाइटनिंग मैन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात भी हैं और इस क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता भी काफी हासिल है। आपने कई कार्य किए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार
2: कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, ये जो नौतपा है ये क्या होता है, इसमें क्या होता है?
3: नौतपा, जैसे कि आपने बताया कि गर्मी के, भीषण गर्मी के 9 दिन, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, जब हमारा जो सूरज है वो नए नक्षत्र में प्रवेश करता है और इस वक्त सूरज सीधी रोशनी हमारी धरती पे देता है, तो जितने भी हमारे क्षेत्र जैसे भारत में अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, कर्क रेखा की बात करें, तो उसकी लाइन में जितने भी क्षेत्र आते हैं जो कि मुख्यतः मध्य भारत से गुजरता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, मिजोरम तक तो होते हुए,
2: यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्तर भारत और पूर्वी भारत लगभग इसमें कवर होते हैं।
3: बिल्कुल, पूरे कवर होते हैं। और ये जो रेगिस्तान की ओर से गर्म हवा आती है ये आग में घी का काम करती है। तो एक तो सूरज की रोशनी और रेगिस्तान से चलने वाली गर्म हवा दोनों मिलाकर पूरे भारत को, खास करके मध्य भारत को, बहुत अच्छे से गर्मी से पाट देते हैं। और ये जब गर्मी बढ़ती है तो तापमान बढ़ता है, तापमान के साथ साथ आप देखेंगे वातावरण में नमी कम हो जाती है, सूखापन ज्यादा हो जाता है और इसके कारण हर जगह आप लो प्रेशर देखेंगे बिल्डअप होता है, जिसके कारण बवंडर, आंधियां चलती है। मई के महीने में आप देखेंगे हमारे राजस्थान से धूल भरी आंधी भी आती है। तो इन सबों का जो मिश्रित प्रभाव होता है वो हमारे पूरे सिस्टम पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे इकोनॉमी पे, हमारे शहरों पे, गांवों पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
2: प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, ये जो नौतपा होता है इससे तय कैसे किया जाता है, किस प्रकार हम इसकी पहचान करेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं?
3: नौतपा के सबसे पहला लक्षण है कि जब तापमान बढ़ जाए, जब तापमान 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाए, तब हम लोग मानते हैं कि नौतपा शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान कहता है कि जब 5 डिग्री से ज्यादा डिपार्चर हो तो उसको हम एक्सट्रीम हीट मानते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे दिल्ली में 44 डिग्री चल रहा है, बांदा है जहां 47.8 डिग्री टेम्परेचर चल रहा, चुरू, जैसलमेर, तो ये सारे इलाके हैं जो नौतपा से सबसे ज्यादा प्रभावित है और सबों में जो तापमान का स्केल है वो 45 डिग्री के आसपास चल रहा है, 45 से 48 डिग्री का तापमान होता है। और इसके साथ साथ दिन में गर्म हवाएं चलती है जिसे हम लू के नाम से भी जानते हैं, तो ये लू उसकी दूसरी पहचान है। तीसरी ये बात है कि हवा में नमी बिल्कुल कम हो जाती है और पानी की स्कार्सिटी हो जाती है। तो इस दौरान इंसान को, जानवर को, सभी को ये हिदायत दी जाती है कि जब पीक जो

0: समर का पीरियड होता है, पीक टेम्परेचर का पीरियड है, 11 बजे से 4 बजे तक वो घर के अंदर रहे और अपने आप को तापमान से अधिक तापमान में एक्सपोज न करें और सुरक्षित रहे, छत के नीचे रहे, ठंडे स्थानों पर रहे।
1: अभी आपने ये बताया कि कहीं कहीं पर 43 डिग्री, कहीं कहीं 44, कहीं कहीं 45, 46 भी पहुंच जाता है, तो क्या ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान होता है, तो उस अलग अलग जगहों पर भी नौतपा हम कह सकते हैं अलग अलग टाइम में?
0: लोकल सेंस में स्थानीय तौर पे आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं सूरज की जब गर्मी आती है, अगर वो सूरज की रोशनी घास पे या पानी पे पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन वही अगर पथरीले कंक्रीट वाले स्थानों में पड़ती है उन जगहों पे ज्यादा हो जाती है। अब जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, मेट्रो सिटी की बात करूं, तो यहाँ पे पॉल्यूशन, गाड़ियों का चलना, कंक्रीट, ये सारे मिलकर इस तापमान को और बढ़ा देते हैं।
1: तो हम इसे भी नौतपा कह सकते हैं, तापमान जब भी बढ़ जाए तो हम इसे नौतपा कहते हैं।
0: बिल्कुल
1: संजय जी, नौतपा जो इतना होता है, इतना तीव्र होता है, इतना तीखा होता है, तेज होता है, तो इसके वैज्ञानिक कारण क्या होते हैं?
0: देखिए, वैज्ञानिक कारण सबसे पहला, सूरज जब कर्क रेखा के ऊपर होता है तो सीधी सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा हमारे धरती पे पड़ती है। आज नौतपा के वक्त जो दिन का समय होता है वो लंबा समय होता है, 17-18 घंटे का दिन होता है, तो 17-18 घंटे डायरेक्ट जो सीधा एक्सपोजर होता है उसके कारण लगातार वो गर्म होता जाता है और इसी कारण तापमान का ज्यादा असर दिखता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हो जाता है वो नमी की कमी, और ये जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों मिलाकर हम एक हीट इंडेक्स कहते हैं। आमतौर पर एक इंसान का शरीर 37 डिग्री हीट इंडेक्स को झेल सकता है, लेकिन हीट और मॉइस्चर मिलकर ये कई बार 52-54 डिग्री का भी आपको असर दिखाते हैं। तो आप देखते होंगे कई लोग जो बाहर खड़े हैं वो खड़े खड़े गिर जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, उनको लू लग जाती है, उल्टियां होती है, तो ये नौतपा का प्रभाव होता है। तो जो मुख्य वैज्ञानिक कारण है, सबसे पहला सूरज का कर्क रेखा की सीधा ऊपर आना और दूसरा आपके टेम्परेचर, आपकी ह्यूमिडिटी का कम हो जाना।
1: तो क्या ये नौतपा 9 दिनों का ही होता है या इसकी समय सीमा कुछ बढ़ भी जाती है, जैसे कि हम नाम से नौतपा?
0: देखिए, नाम से हमारे यहाँ नौतपा कहा जाता है, आमतौर पर यह 9 दिनों की होती है, लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं स्थिति चल रही है तो 25 मई के पहले ही नौतपा ऐसी स्थिति हो गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि 9 दिन के लिए ही हो, ये 11 दिन 12 दिन भी हो सकते हैं, और इसका नापने का जो स्केल है वो तापमान है। जब तापमान 44 से 45 डिग्री के ऊपर चला जाए तब हम उसको नौतपा कहते हैं।
1: जी कर्नल साहब, ये ऐसा माना जाता है कि जितनी अधिक गर्मी होगी उतनी अच्छी बारिश होगी, क्या ये अनुमान सही है?
0: बिल्कुल, ये एक मौसम का चक्र है और जितनी अधिक गर्मी होगी उतना लो प्रेशर का एरिया बनेगा और उतनी ही ज्यादा मॉइस्चर हवा में लोड होगी। इनफैक्ट हमारी एक रिसर्च के अनुसार 1 डिग्री जब तापमान बढ़ता है तो जो हमारा वातावरण है उसमें मॉइस्चर लोडिंग, जो नमी की लोडिंग की कैपेसिटी है, वो 7-12% बढ़ जाती। तो इसीलिए जितनी ज्यादा ये नौतपा में तापमान होगा उतना ज्यादा मॉइस्चर बनेगा और उतनी अच्छी फिर बारिश होगी। ये लो प्रेशर के कारण जो समुद्र से आने वाली हवाएं हैं वो ज्यादा तेजी से आकर्षित होंगी और मॉनसून निर्विरोध, बिल्कुल बिना बाधा के पूरे क्षेत्रों में अच्छे से बारिश कर पाते हैं।
1: वैसे पशु पक्षी और इंसान पर तो असर होता ही है, कृषि पर भी यानी कि पेड़ पौधों पर भी इसका क्या असर होता है?
0: देखिए, ये जो नौतपा है इस वक्त इंसान पशु के साथ साथ हमारे पौधों पे, हमारे जल जीवन पे इसका बहुत असर होता है। जहां तक प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, अगर ये नौतपा प्रोलॉन्ग हो जाता है, लंबे समय तक चला जाता है, तो हमारी जो भी फसलें हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जो हमारे पत्ते हैं वो गर्मी के कारण मुरझा जाते हैं,
1: झुलस जाते हैं,
0: और हमारी जो सब्जियां होती हैं स्पेशली वेजिटेबल और अभी फलों का मौसम है, खास करके आम, लीची, ये सब लगे होते हैं, तो इनपे जब ज्यादा तापमान होता है तो इनके झुलसने का खतरा होता है।
1: यानी कि जो छोटे छोटे पौधे हैं जिनकी जड़ें नीचे तक नहीं जाती हैं, लगभग ऊपर ही रहती हैं, तो उनमें जो झुलसने का जो खतरा है वो बढ़ा रहता है और इसमें उनका असर ज्यादा होता है।
0: बिल्कुल, ये जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके पत्ते भी अगर आप देखेंगे तो वो थोड़े कमजोर होते हैं और उनमें तुरंत गर्मी या तुरंत सर्दी का असर होता है, इसीलिए उन पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे आप पीपल का पेड़ देख ले, उसके पत्ते मोटे होते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर काफी अच्छा होता है, तो उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी नौतपा हो तो ऐसे पेड़ों के, छायादार पेड़ों के नीचे जाओ जिसके पेड़ के पत्ते हो वो घने हो और वो आपको उस पत्तों में जो मॉइस्चर है उसके माध्यम से, जो हवाओं के माध्यम से आपको ठंडी ठंडी हवाएं दे, ठंडक दे, जिससे कि आप पे प्रतिकूल असर ना पड़े।
1: जैसे आपने कहा पीपल के पत्ते और उसी प्रकार से बरगद के पेड़ हैं और उसी प्रकार से नीम के पेड़ हैं। नीम के पेड़ के पत्ते छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत घने होते हैं और उसके छांव में बड़ा सुकून सा होता है।
0: बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आप नीम के पत्तों की बात करें तो उसकी जो हीलिंग कैपेसिटी होती है उसके अंदर कई ऐसे तत्व होते हैं जिससे कि आपके स्वास्थ्य को काफी फायदा होता है। उस इलाके में जो कीड़े मकोड़े हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया है उन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे हमारे गांवों में काफी संख्या में घरों के सामने जहां आबादी रहती है नीम के

0: वहां पे कोविड के होने का चांस ज्यादा
1: ज्यादा
0: होता हो।
1: होता।
0: तो जब ये गर्म तापमान होता है तो ये कीड़े मकोड़े वाकई में समाप्त हो जाते हैं। स्पेशली ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म
1: जी
0: बैक्टीरिया, कीटाणु, ये सब होते हैं, इनकी मोर्टैलिटी ज्यादा होती है और ये समाप्त हो जाते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक बेसिक साइंस है कि अगर आपको कीड़े मकोड़ों से बचना हो, आपके पानी को शुद्ध करना हो, तो आप उसे गर्म कर
1: गरम
0: लें।
1: कर दीजिए।
0: तो ये अधिक तापमान से उनका भी नुकसान था। और ये मौसम का बहुत एक प्यूरिफिकेशन का ये चक्र है। आदमी भी, इंसान भी, पशु पक्षी भी इस मौसम के दौरान जिस तरीके से ज्यादा पानी पीता है, फलों पे ज्यादा डिपेंड करता है, सब्जी ज्यादा खाते हैं, तो इससे एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो ये हमारे एक शुद्धिकरण का समय है। और जब फिर बारिश का समय आता है तो हम बिल्कुल ताजा होके पूरी ऊर्जा के साथ अपनी खेती में लगते हैं।
1: हम तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नौतपा के कई नुकसान हैं तो उसके फायदे भी हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये जो गर्मी, बारिश और सर्दी का चक्र है, ये तीनों हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आज गर्मी होती है तो हमारे समुद्र में भाप
1: भाप
0: बनता है,
1: बनता है।
0: बादल बनता है, बारिश होती है, फिर सर्दी आती है तो ये बर्फ बन के हमारे हिमालय पे जमते हैं और वही वाटर टावर हमें देश की पूरी नदियों में पानी ला के पूरे देश को पानी देता है। तो एक ये चक्र है। और मैं चाहता हूं कि चाहे वो नौतपा हो या स्नोफॉल हो या बारिश का मौसम हो, तीनों मौसमों को अपने समय चक्र के अनुसार भरपूर होना चाहिए।
1: जी,
0: उसी में हमारी खुशहाली है।
1: ये खुशहाली बनी रहे और इसी खुशहाली को बनाए रखने के लिए इस दौरान, खासकर गर्मियों के मौसम, हालांकि हर मौसम में कुछ कुछ सावधानियां तो बरतनी ही पड़ती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में देखा आपने शुरुआत में भी ये कहा कि नमी की कमी हो जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, धरती बहुत ज्यादा सूख जाती है और इंसान भी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो
0: बिल्कुल, इंसान भी डिहाइड्रेट हो जाता है, लेकिन हर प्रकृति के मौसम के लिए प्रकृति ने आपको समस्याओं का समाधान भी दिया है।
1: जी
0: तो इसीलिए अगर आप सर्दी में 2 लीटर पानी पीते हैं तो नौतपा के दौरान आप 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। आप खाना समय पे जरूर खाएं, अच्छा पेट भरकर खाएं, और तन पे जो कपड़े होते हैं वो अच्छे से पहने, आप आराम जरूर करें, आप सोए जरूर, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और एक स्वस्थ जीवन जिसमें थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम, योग, इन सबों का अभ्यास करें, तो मैं समझता हूं हर मौसम चक्र के लिए, नौतपा ही क्यों, हर मौसम चक्र के लिए आप बिल्कुल ऊर्जावान रहेंगे।
1: जी, कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आप लाइटनिंग मैन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हैं। तो ये जो लाइटनिंग है, अगर हम इसे बिल्कुल सरल शब्दों में कहें, तो आप इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, किस प्रकार समझाएंगे?
0: देखिए, हम सबों ने अपने घर की रसोई में देखा है, जब गर्म तवे पे आप पानी डालते हैं तो बहुत भाप उठता है
1: जी
0: और सीधा वो आसमान की ओर जाता है। ये नौतपा अभी हमारी धरती को वैसे ही तपा रहा है।
1: जी
0: और जैसे बारिश आएगी, मतलब ये बादल के कण आएंगे, यहाँ एवेपोरेशन होगा, थंडर स्टॉर्म आएंगे,
1: जी
0: और ये थंडर स्टॉर्म जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये भाप के कण भी साथ में ऊपर जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। जब ये तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है तो ये भाप के कण बर्फ के कणों में बदल जाते हैं, जिसे ग्रॉपिल कहते हैं। ये आपस में टकराते हैं और उससे घर्षण से बिजली पैदा होती है, और यही बिजली इन्हीं भाप के कणों के माध्यम से जमीन पे गिरती है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जो वज्रपात है, अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में आकाशीय बिजली का आवाज और चमक के साथ जमीन पे गिरना, उसे कहते हैं। और इससे जो इंसान को नुकसान होता है, वो सबसे पहले इंसान को करंट लगती है, इलेक्ट्रोक्यूशन होता है और उसकी तत्काल मौत हो जाती है। उसकी आंख में चमक के कारण उसको अंधा होने का खतरा होता है, और जो बहुत तेज आवाज आती है उसके कारण आपके कानों के बहरेपन का सबकी संभावना है। तो वज्रपात भी एक आपदा मैं नहीं कहूंगा, ये एक प्रकृति का प्रोसेस है। और जब हम खेती के लिए जाते हैं, उससे पहले हमारे जो जमीन है, मिट्टी है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए ये वज्रपात होती है। और जो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में, 79% वातावरण में जो नाइट्रोजन है, उसको ये तोड़ के जमीन के साथ मिलाती है, मतलब खाद देने का काम करती है।
1: संजय जी, वैसे देखा जाता है कि इन दिनों यानी कि नौतपा के बाद में या फिर नौतपा के दौरान, जैसे कि काफी धूल भरी आंधी चलती है और आंधी तूफान के साथ बारिश होती है, तो अक्सर यानी कि पहली बारिश के समय बादल तेज गरजते हैं, बिजली कड़कती है, इसके क्या कारण है? शुरुआत में कुछ ज्यादा ही होते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी धरती पे होगी, जैसे बादल आएंगे उतनी ही ज्यादा वो एवेपोरेशन या थंडरस्टॉर्म होगा, और जो उसमें आसमान की ओर ऊपर उठने की गति है उतनी ही ज्यादा तेज होगी, उतनी ही ज्यादा घर्षण होती है, और इसी के कारण ये बादल ज्यादा गरजते हैं और ज्यादा बरसते हैं।
1: जी जी
0: नौतपा का जो पीरियड है हर जगह अलग अलग होता है। कुछ स्थानों पे नौतपा ऑलरेडी चल रहा है, इन ब्रॉड हम तो मानते हैं 25 मई से 2 जून तक, लेकिन बिहार के कुछ इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न इलाके हैं, वहां नौतपा ऑलरेडी है, और वहां अभी मॉनसून आ रहा है, तो इस बार मॉनसून थोड़े जल्दी आ रहा है। आप देखेंगे 27-28 तारीख को जब मॉनसून केरल के तट पे आ जाएगा, तो कुछ इलाकों में वज्रपात जल्दी शुरू हो जाएगी, बारिश जल्दी शुरू हो जाएगी।
1: कर्नल प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने नौतपा के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी, सावधानियों के विषय में बातचीत किया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
2: अभी आप नौतपा गर्मी का

0: कारण और सावधानियां विषय पर प्रोफेसर कर्नल संजय श्रीवास्तव से कमल किशोर की बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में शेफाली को एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका मिली।

इसके ठीक एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया।

था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था, इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और कई पुरस्कार।

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी, जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माई फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याले की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी, दिल धड़कने दो। जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आईं। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

करण मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घाइवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कंवल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत के रीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। इस फिल्म को कई अवार्ड्स मिले। शेफाली ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब जीता।

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच सांठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी। ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियाँ थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।
2: बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था, वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना, ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

0: लो।
1: मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहाँ तक कि उसकी आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहाँ से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में 1 रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था, उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी की जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

तुम मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे। उनकी हार होगी, तुम्हारी जीत होगी, और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

0: संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।
1: तो कितनी अच्छी।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमाने खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें। कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती है जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है, उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए। लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दौर के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली?
3: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

कार्यक्रम का आगाज हमने किया फिल्म गमन की इस गजल के साथ। गायिका थी छाया गांगुली। इसे लिखा था मखदूम मोहिउद्दीन साहब ने और धुन बनाई थी जयदेव ने। जगजीत कौर की आवाज में हम आपको फिल्म बाजार की ये रचना सुनवा रहे हैं। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

जगजीत कौर को अभी आपने सुना फिल्म बाजार में, और लीजिए अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना, आवाज चित्रा सिंह की है और फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म गजल का ये गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।

0: बढ़ता, विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता, आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गांव, गरीब, किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है। लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प, न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्टैक्ट, हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान।
1: रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
0: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा RPF कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर।

0: या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
1: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।

साथियों, आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें यहां पहुंचाने के लिए हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए

लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है, दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है, भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट
जनरेशन टेक्नोलॉजी में

0: प्रवेश द्वार खोल देगा है। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी बोलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इस कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं, स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टीयर टू और टीयर थ्री शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं। सरकार का सामर्थ्य आप ही है, जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव। नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

ये स्वर लता मंगेशकर का फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खयाम साहब ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ?
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा।
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म गोरा का ये गीत।
4: ये नहीं।

हेमंत कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम में आप सुनिए खयाम साहब का संगीत, कैफी आजमी की बोल, सुलक्षणा पंडित की आवाज और फिल्म का नाम संकल्प।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्षमा से, आवाज सुमन कल्याणपुर की। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की। फिल्म का नाम है अर्थ।

फिल्म अर्थ की गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। हेमंत कुमार का संगीत, कैफी आजमी की बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा।

लीजिए, कार्यक्रम में आप सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शबनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ, हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम लेकर सुरीला सफर। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सुरीला सफर में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिंदगी का ये सफर उतार चढ़ाव भरे एक खूबसूरत सुरीले गीत जैसा ही तो है, जो अपने अनोखे तजुर्बों और अनुभवों से भरा हुआ है। यानी हर लम्हा एक नई धुन की तरह आता है, जिसमें सुख दुख के सुर मिलकर इस यात्रा को यादगार बना देते हैं, है ना? तो आज का ये सुरीला सफर कितना यादगार बन जाएगा, क्योंकि आज हमारे श्रोताओं ने उस सफर में घुसकर उन गीतों को ढूंढ लिया है जो गीत आज हमने आपके लिए चुने हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमने आपको थोड़ा सा क्लू दे दिया था ताकि सरल हो जाए वो बात जो आप चाहते थे, और आपने वो कर भी दिखाया, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम दो महिला गायिकों द्वारा गाए गए गीत पर आधारित है। यानी इनमें दो महिला गायिकाओं ने अपनी आवाज दी है, और आप सभी जानते हैं कि हमारी फिल्मों में एक खास जगह रखते हैं वो गीत जहां दो अलग अलग महिला आवाजें आपस में मिलती हैं और वे गानों में एक अलग ही ऊर्जा और मस्ती और भावुकता भर देती हैं। तो ऐसे कई शानदार गीत हैं महिला जुगलबंदी से में, जो गायिकाओं में अनोखा तालमेल हमें देखने और सुनने को मिलता है। लता जी की बात करें, आशा जी की बात करें, उषा जी की, गीता दत्त की, सुमन कल्याणपुर की, कमल बारोट की, न जाने कितनी ऐसी आवाजें हैं आज इस सुरीले सफर में हमारे साथ। और ये सभी गीत, जैसा कि हमने आपको बताया, एक ही संगीतकार चित्रगुप्त साहब, यानी महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में गाए गए गीत हैं। तो हमने आपको थोड़ा सा जब ये बता दिया था तो आपने उन गीतों को ढूंढ भी लिया है। हाँ, कुछ श्रोताओं ने कहा है कि भाई अभी भी हम इन गीतों को नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई बात नहीं, आज इस सुरीले सफर में आप शामिल हुई ना हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। चित्रगुप्त साहब का संगीत, प्रेम धवन के बोल, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम है तूफान में प्यार कहां।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था तूफान में प्यार कहां। हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं और लिख रहे हैं कि मंदाकिनी जी, आपने विविध भारती के सुरीले सफर में आज की इबारत को कुछ स्पष्ट करके आसान कर दिया है। जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और बजने वाले गानों का निर्णय हो ही गया समझो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने इबारत की जगह खुद गीतों के शब्द लिख दिए और उसमें ये भी लिख दिया कि सभी गीतों के संगीतकार एक ही हैं और ये सभी गीत दो महिला गायकों के स्वर में होंगे, तो वैसे बहुत मुश्किल तो हो गया है। इबारत में शब्दों को ढूंढकर हम कई गीत सही लिख देते थे, लेकिन आज की परीक्षा मुझे लग रहा है और कठिन है। मैं दावे के साथ लिख रहा हूं कि बहुत ही कम श्रोता ढूंढ पाएंगे। बस एक शब्द गोरी पे दो महिला गायक की ढूंढ पाया हूं, बाकी गीतों पर नजर दौड़ाई तो संगीतकार भी अलग अलग दिमाग में आ रहे हैं। उफ कर दिया दिमाग का दही। अरे इतना दिमाग को खराब करने की जरूरत थोड़ी है। ये कार्यक्रम तो मनोरंजन का कार्यक्रम है, मनोरंजक कार्यक्रम है आपके लिए, है ना। इसमें हमें अपने दिल और दिमाग को बहुत ही शांत और सुकून से भरा रखना है, तभी तो ये सफर सुरीला बन पाएगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने इबारत पर से इबारत न लिखकर सभी श्रोताओं की इच्छाओं को साकार कर दिया है। खूब अच्छा लगा, जो बात हम चाहते थे वही हो गई। आज मैं गीत सूची तैयार न करते हुए सिर्फ जो गीत बजने वाले हैं उसे सुनने का लुत्फ उठाऊंगा, क्योंकि जो गीत सुनवाए जाने वाले हैं उसके संगीतकार चित्रगुप्त होंगे, जो मेरे पसंदीदा संगीतकारों में से एक है। बचपन से इनके रचे गीत सुनकर मेरे दिल की धड़कन रंग लाती है, आपके दिल की धड़कन भी रंग लाती होगी। ये विविध भारती के दायरे, ये दोपहर का समा, ऐसे में क्यों न जुड़ जाए हम वहां, मिलते हैं दोपहर 1 बजे। क्या बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो गीतकार भी बन गए हैं लगता है, और शायर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ श्रोताओं के और हम पढ़ेंगे विचार, जहां उन्होंने कुछ गानों को बिल्कुल सही रूप से समझा है। ये गाना है फिल्म परदेसी का, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की ही हैं, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार वही चित्रगुप्त साहब।

एक फिल्म को अद्वितीय ढंग से मेलोडी प्रदान की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज हम आपके साथ रहेंगे, अभी हमारा मन कुछ उदास सा है, क्यों भाई? तो लिखने का मन नहीं है, पर हाँ, आज के पेपर को सरल कहें या कठिन समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि यदि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर सरल हो ही जाएगा, और अगर साथ में आप हैं तो इतने काबिल श्रोताओं का तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वैसे भी हम सब विविध भारती की पाठशाला में रोज इतना कुछ पढ़ते हैं कि सवाल के जवाब न भी दे पाए ऐसा हो नहीं सकता, जरूर देंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये जो रोचक परिवर्तन किया गया है, इससे श्रोताओं को आसानी हुई है और उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। अब किसी को एग्जाम का अनसीन पैसेज हल नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, दो गायिकाएं तो लता मंगेशकर और आशा भोसले ही हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी शंकर जयकिशन में से एक लग रहे हैं, बाकी श्रोता अपना दिमाग लगाएंगे। इस परिवर्तन से मैं आज खुश हुआ हूं और विविध भारती का आभारी हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज एकदम अनोखा, निराला और अभिनव प्रयास किया है आपने, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कार्यक्रम में विविधता ही उसकी पहचान बनती है, जो बरबस श्रोताओं को खींच लाती है, और श्रोतागण भी आनंद पूर्वक हिस्सा लेते हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा विविध भारती अव्वल रही है, याददाश्त और दिमागी कवायद सभी की शुरू हो चुकी होगी। देखें किन किन सौभाग्यशालियों के हाथ बटेर लगती है। दिलचस्प कार्यक्रम का बेकरारी से इंतजार रहेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने संगीतकार चित्रगुप्त के संगीत से सजे लग रहे हैं। तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया, गौरी तू लाख छुपा, आपने कई गानों का यहाँ जिक्र किया है, तो सुनिएगा आज की गीतमाला आपकी गीतमाला से मिलती है कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर लगता है बहुत आसान है पर बहुत कठिन है। मुझे ज्यादातर गानों के बारे में पता चल गया। एक बात बता दूं, सभी गानों के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, अब गानों और फिल्मों के नाम भी इन्होंने बताए हैं, तो आप देखिएगा आपकी जो ये प्लेलिस्ट है उससे हमारी प्लेलिस्ट कितना मेल खाती है, बताइएगा और लिखिएगा, हमें इंतजार है। ठीक है, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़ा अलग सा दिमाग की परीक्षा लेने वाला सुरीला सफर है। ये अंदाज है कि आज चित्रगुप्त जी के संगीत निर्देशन से हमारा सुरीला सफर तय होने वाला है। आपने भी कुछ गीतों के नाम लिखे हैं और उनका जिक्र किया है, तो पता लगाइए आज हमारी पसंद क्या आपकी पसंद से मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस भीषण भरी गर्मी में विविध भारती के नीचे मधुर गीतों के जरिए शीतलता मिलेगी और ये सफर सुहाना होगा, बिल्कुल सुहाना होगा ये सफर इस गीत के साथ। और इस गीत के बाद मैं आपसे दो सवाल पूछूंगी जिसका उत्तर भी आपको तैयार रखना है। उषा मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है नई जिंदगी, प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त का संगीत।

जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने अपने विचार लिखे हैं और खुश भी हैं कि आज थोड़ी सी तब्दीली उन्हें अच्छी लगी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीतकार चित्रगुप्त हैं, उन्होंने अपनी

तो ये गीत आपको कैसा लगा? सुंदर गीत लगा ना, बहुत ही खूबसूरत गीत था। और हमारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं, आप लिखते हैं कि संगीत का ये सफर वाकई बहुत सुरीला और दिलचस्प है। आपने जो सुराग दिए हैं, एक ही संगीतकार, दो महिला गायिकाएं और ये 12 विशिष्ट शब्द, ये सीधे तौर पर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम यानी गोल्डन एरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन शब्दों और शर्तों को जोड़ने पर जो नाम सबसे ऊपर उभरता है वो है संगीतकार ओपीडी अय्यर साहब का या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। जी नहीं, आज हम आपको एक ही संगीतकार जो कि चित्रगुप्त साहब हैं, उन्हीं से जुड़े गीत सुनवा रहे हैं। यानी चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में आज जिन दो महिला गायिकाओं ने जुगलबंदी की, वो गीत हमने आपके लिए चुने हैं। फिर भी आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात यह है। आप लिखते हैं कि आशा भोसले और गीता दत्त की जोड़ियां हैं, इस तरह के बहुत सारे सदाबहार गाने हैं जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपने कुछ गानों का जिक्र किया भी है। देखिए, आपके गाने हमारे गानों से कितना मेल खा रहे हैं, गौर कीजिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वे उस सुकून, ठहराव और मेलोडी का नाम है जो आज भी रेडियो पर बजने पर हमें एक खुशनुमा जमाने में वापस ले जाते हैं। महान संगीतकार चित्रगुप्त भारतीय सिनेमा के वे अमर गायक शिल्पी थे जिन्होंने बिना किसी भारी भरकम वाद्य यंत्रों के शोर के अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली धुनों से संगीत को नवाजा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार तो चित्रगुप्त हैं और प्रत्येक गाना दो फीमेल सिंगर्स का गाया हुआ है। आपने भी कुछ गाने लिखे हैं? बिल्कुल, आपके गाने हमारे कुछ गानों से बिल्कुल मेल खा रहे हैं। देखिए कौन कौन से गाने हैं, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती के सुरीले सफर में इबारत से कुछ चीजें स्पष्ट करके आसान किया है आपने, जैसे एक ही संगीतकार और दो महिला गायिकाएं, बस अब शब्दों के गानों पर दिमाग लगाते हैं और गानों का निर्णय हो ही गया, समझो। अरे वाह, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, सरल नहीं कठिन है आज की गीतमाला, आपके दो प्रश्नों से ज्यादा भी कठिन है। अरे, अभी तो दो सवाल हमारे आए ही नहीं है, कैसे कठिन हो सकती है? आज तो हमने आपको शब्द दे दिए थे और साथ ही बता दिया था कि एक ही संगीतकार पर केंद्रित है ये शब्द और दो गायिकाओं पर, मतलब दो जो जुगलबंदी है महिला गायिकाओं की जुगलबंदी होगी, कितना सारा तो बता दिया था आपको और हमारे कई श्रोताओं ने पकड़ भी लिया है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज का सुरीला सफर ने दिमागी तापमात्रा बढ़ा दी है, संभावित गानों का शब्द अनुरूप कयास लगाना कष्टप्रद है, इन्हें ढूंढने में श्रोता बंधुओं के कमेंट्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। आज श्रोता बंधुओं के लिस्ट के अनुसार ही हम भी चलने वाले हैं। चलिए, तो आज के दो सवाल, वैसे दो सवाल नहीं है लेकिन इन्हीं सुरीले सफर से जुड़े ये सवाल हैं। चूंकि आज आप सुन रहे हैं कुछ गीत, तो इनसे इतर आपसे कुछ पूछ लिया जाए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं। जैसे मुझे एक गीत बहुत पसंद है, जब जब तुम्हें भुलाया तुम बहुत याद आए, है ना ये गीत, जहां आरा फिल्म का लता मंगेशकर और आशा भोसले की जुगलबंदी है। तो इस तरह के और भी गीत जो हैं महिला जुगलबंदी वाले गीत, वो आपको कौन कौन से गीत पसंद हैं या याद हैं, उसका जिक्र जरूर करें। और एक सवाल हमारा ये है कि संगीतकारों के बारे में बताइए, ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो गीत आपको पसंद हैं, जैसे कि आज हमने चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जुगलबंदी गीत लिए हैं। ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत गवाए हैं, आप बताइए कौन से ऐसे संगीतकार हैं जो आपको पसंद है या उनके गाने आपको याद हैं। आगे बढ़ते हैं सुरीले सफर के इस गीत की ओर। चित्रगुप्त साहब का संगीत पंडित भरत व्यास के बोल हैं, सुमन कल्याणपुर और कमल बारूट की आवाजें हैं। इस बार फिल्म का नाम है महाभारत।

आज की सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं। पहला सवाल हम आपसे ये कर रहे थे कि आपकी पसंद के महिला जुगलबंदी वाले गीत कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने अपनी पसंद का गीत आपको बताया। फिल्म जहां आरा का लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया वो गीत जब जब तुम्हें भुलाया तुम और याद आए, है ना? ठीक उसी प्रकार और भी बहुत सारे गीत हैं, तो आपको कौन सा गीत पसंद है या बताइए कौन कौन से गाने पसंद है। और एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं इसका जवाब कि संगीतकारों में बताइए ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्होंने महिला युगल गीत गवाए और वो आपको याद हैं वो गाने, या वो गाने आपको बहुत पसंद हैं। जैसे आज हम चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में ये जो महिला जुगलबंदी वाले गीत लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार और भी संगीतकार हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की है, बताइए वो कौन कौन से गीत हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 बजे जब सुरीला सफर शुरू होगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और श्रोता दिमाग पर कम जोर डाले, सुरीले गीतों का आनंद लें और गीत भी पहले से अधिक बजेंगे। धन्यवाद विविध भारती, धन्यवाद मुझे। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमें बुरा लगे या हमें गुस्सा आ जाए या हम तनावग्रस्त हो जाए। बिल्कुल मनोरंजक कार्यक्रम है ये, आपके मनोरंजन के लिए इसका

आनंद उठाइए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये बहुत अच्छा नया प्रयास है, शब्द आपने दे दिया और हिंट भी दे दिया है, तो कोशिश भी हमारी बनी रहेगी। और वहीं आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि लगता है आज आपने यू टर्न मार दिया है, सुरीला सफर का ये पैटर्न भी अच्छा है। अब फिर परीक्षा होगी, जानकारी बता पाएंगे, चलो चलें सुरीले सफर पर मंदाकिनी जी के साथ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गेंद आपने डाली है वो गुगली जैसी लग रही है, लेकिन यॉर्कर भी हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, बाहर निकल जाएगी, ज्यादातर बल्लेबाज असमंजस में है। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, आज तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, देखिए ना फटाफट हमारे कुछ श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही गाने चुने हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं होता उन सभी गानों का जिक्र यहाँ करने का, वरना आपको बताते कि आज बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने सही चुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है आज शायद यही गाने बज पाने वाले हैं, बेहद अच्छा, आज शायद यही गाने बजेंगे, आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, बेहद हिम्मत वाला काम है, अगर ऐसे गाने शामिल होंगे तो कार्यक्रम की रोचकता बनी रहेगी और कुछ हर रोज बजने वाले गानों से अलग सुन सकेंगे, बेहद नायाब चयन है, आपने हमें धन्यवाद दिया है और बिल्कुल आपके कुछ गीत तो हमारे प्लेलिस्ट से बिल्कुल मेल खा रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, आप सभी श्रोताओं को जो आज की जो सुरीला सफर की ये प्लेलिस्ट है उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे, भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया, उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है, इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

जी कितना खूबसूरत गीत था, है ना। अच्छा, इस गीत को आपने पहले कभी सुना था बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वे आज तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहां तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, इस महारथी आपको ये महारत आपको हासिल है। अच्छा, मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफर की पोस्ट का इंतजार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफर की पोस्ट देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे इस सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता है इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है, फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रेम धवन का लिखा ये गीत सुनते हैं। चित्रगुप्त साहब की संगीत रचना है, सुमन कल्याणपुर और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। ये फिल्म है गेस्ट हाउस।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए। अच्छा, काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं, तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है, बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी, उषा मंगेशकर और आशा भोसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा, आपने हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफर में तो सफर सुरीला कैसे नहीं होगा अगर आप हैं हमारे साथ, तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बाहर आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में, परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा, चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चित्रगुप्त साहब के संगीत निर्देशन में, इसे आर कृष्णा ने लिखा है। इस बार स्वर है गीता दत्त और उषा मंगेशकर के और ये फिल्म है कंगन। हमने शब्द दिया था लिख पढ़, वही है ये गीत।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजी हम तुम और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचनाएं थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बता, ये गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचित धुन में शामिल था। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश है और काफी हंसमुख लग रही है। अच्छा और वही एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वही एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गांव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा लता मंगेशकर और सुधा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह, मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांदरे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम, हंसतावा नूरानी चेहरा, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर, मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। और वहीं एक श्रोता ने कहा, आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी का हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

तो दोस्तों आज का सुरीला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज लाखों करोड़ों की भीड़ में भी कई बार इंसान अपने को अकेला पाता है। आधुनिकता के इस दौर में छोटे होते जा रहे परिवार के कारण अकेलेपन की समस्या आम बात हो गई है। ऐसे में अगर हम अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे तो हमारा अकेलापन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति बन जाएगा। देखिए ना, चांद रोज रात को आकाश में अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ता है, बिना थके, बिना हारे।

अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के अलावा अकेलापन दूर करने का एक सरल उपाय है। अपने जीवन में किसी को अपना हम ख्याल बना लें, हम सफर बना लें। ऐसा प्रयास करके तो देखें, जिंदगी एक नए रूप में, नए रंग में मुस्कुराती नजर आएगी।

लेकिन आज के जीवन की आपाधापी में कोई आपका साथ न दे, कोई आपकी पीठ न थपथपाए, आपकी सफलता पर तालियां न बजाए, तो फिक्र की क्या बात है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका सच्चा हितैषी तो ऊपर वाला होता है। ऐसे में अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए। आप अकेले ही पूरी दृढ़ता के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, ज्योति तो डाक्षुने के उनाशे तबे एकला चलो रे।

दोस्तों, जब हम सकारात्मक सोच के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अकेलापन हमारी शक्ति बन जाता है। आज त्रिवेणी का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब

0: ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा

0: की भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम ग्रिबियासिस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें थीं। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
3: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथी फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार हैं पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्त।

0: कोई मारे कोई किसे को,
1: ना कोई खाए मांस किसी का,
0: ना कोई पीवे खून किसी का,
1: ना कोई रोके सा...

0: जाऊं।
1: धन्य है मौसी, धन्य है मौसी, धन्य है मौसी।
0: देखो भाई जाती तो हूँ जाने को, लेकिन राजा कहीं जो झपटा मुझको ही खा जाने को।
2: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
3: हम आएंगे,
1: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
4: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटका।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमति, शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोंसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहां से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक, बिमला देवी, शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता, जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से, मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा,

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नूलाल रजक, KRS, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी से, चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से, बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडोसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी।
5: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
1: हम आपको ये चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
6: जी, महाराज,
1: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
2: जी महाराणा।
1: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
2: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगी तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखलावनी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल कहाँ है तेरी भाभी।
2: अरे तारा, कहाँ चली गई?
0: सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांगी क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरो, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ,
3: अरे
0: बुलाओ।

0: Mai da, tiu.
1: तारा सुन
0: जी
1: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
0: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
1: बस अब खूब मजा आएगा।
0: कितना सुंदर कक्ष है, ये पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है, और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है, आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई, अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं। कौन?
2: स्वागत है।
0: ओह आप यहाँ?
2: हाँ जी, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
0: ना,
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
0: स्वामी मेरे देवता,
2: सच
0: मैं तुम्हारी पुजारी।
3: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
2: तुम सच कितनी सुंदर हो चंद्रमुखी, पागल चकोर। ये चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
0: स्वामी हमारे महाराणा से छोड़े इस पागलपन को।
2: रानी
0: और सुनिए,
2: रानी तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूं।
0: स्वामी
2: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूं, मुक्त हूं।
0: सुना आपने?
2: इधर
0: स्वामी।
2: प्रिय
0: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
2: प्रिय मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई हो?
0: स्वामी सुनिए नगाड़े की ध्वनि, राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
2: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
0: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
2: प्रियतम,
0: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
2: प्रिय जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो, विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था, तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका, सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
0: स्वामी यह केवल आपका मोह और वासना है।
2: रानी
0: प्रेम प्रेरणा देता है मोह विचलित करता है
2: रानी।
0: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
2: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी। क्या करूं?
0: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
2: रानी ठहरो,
0: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
2: हूँ। ठहरो रानी,
0: यह हरावंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
2: रानी ठहरो।
0: नहीं
2: रानी, सुनो तो।
0: नहीं सामन, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मधुर सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
2: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
0: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
2: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
0: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
2: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो, मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
0: ना, ना।
2: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
0: ऐसा नहीं कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
2: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
0: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य विजय।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए,

0: मेरे पितृ कुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें यह तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
0: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
2: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
0: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है। रानी जी,
2: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
0: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
0: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रही है? इस हाड़जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी, ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को ना दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
2: आई आई। रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
0: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
2: ये क्या कर रही है?
0: तारा, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर तारा।
2: रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ।
0: पंगली रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखर ताकत, रणसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला, ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे, अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता, बता ना। अरे, फिर रोती है? ला, ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है। तारा, जल्दी कर, लापरवाह। ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शीष रणसिंह को दे देना। और कहना, कहना रानी ने वह विजय मार समझ के लिए दी है। विजय मार।

0: तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामंत के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामंत तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं दारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
2: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
2: रण सिंह जी, क्या लाए हो?
3: हाड़ी रानी का भग्न शीश, ये क्या किया तुमने रण सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
3: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
2: हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का

0: jugando.
1: मुगल बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही है।
2: सच रण सिंह, तुम विजयी हुए?
1: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
2: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
1: मैं चाहता हूँ सामंत, आप कहाँ जाने जा रहे हैं? सामंत ठहरिए, ठहरिए सामंत।
2: रानी, सुना तुमने? हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो। रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा
3: जी। सामंत,
2: रानी जी कहां है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
3: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
2: हाँ, रानी, मेरी भाई रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार, बहुत स्वागत।

0: देवेंद्र
1: बहुत
0: आपका।
1: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
0: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है,
1: जी,
0: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
1: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ, और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
0: करेक्ट।
1: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे
0: अच्छा,
1: ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था, और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में यस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया, जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने, और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
0: बिल्कुल। लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं
1: नहीं होती
0: होती,
1: है।
0: तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की
1: जी
0: तरफ।
1: जी
0: आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था, और अपने माता-पिता के बारे में
1: जी
0: बताइए।
1: जी सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम है पहरा।
0: क्या बात
1: सो
0: है।
1: मैं बहुत छोटा था तब, मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है।
0: ओह
1: तो मैं काफी छोटा था, और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं।
0: हाँ।
1: तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा,
0: अरे
1: और
0: वाह
1: मुझे
0: वाह,
1: पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है, और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश मैं सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था।
0: वाह,
1: देशराज पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने,
0: अरे
1: और भी
0: क्या
1: बहुत सारे
0: बात
1: लोगों के
0: है।
1: गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता, और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे, और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे, और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती, मैं आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे, और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे। तो
0: अच्छा,
1: ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा, तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें, तो उन्होंने
0: हाँ,
1: सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
0: अरे वाह वाह,
1: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब
0: ओके,
1: बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो
0: हाँ,
1: फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था, तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-2-3-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था, और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि
0: अरे
1: एक गाने के
0: वाह।
1: आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे
0: अपने घर के
1: पिताजी
0: ही
1: भी थे,
0: चबूतरे में हुआ।
1: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया, और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए।
0: वाह वाह।
1: सो मैं ये बोलूँगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है, और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय
0: हाँ,
1: जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोलें तो हम, बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
0: कितने दूर है छतरपुर से ये गांव?
1: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, तो बसारी के
0: अच्छा,
1: आगे है पहरा।
0: ओके।
1: बहुत ही छोटा सा गांव है सर,
0: तो
1: बहुत ही,
0: कितनी क्लास तक वहां पढ़े आप?
1: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय, जिसका नाम था जीजाओ रे, बुंदेली फिल्म थी।
0: हाँ,
1: उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव, जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय
0: अरे
1: तक,
0: वाह,
1: जीजाओरी की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जीजाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका,
0: क्या
1: टाइटल
0: बात है।
1: सॉन्ग था
0: अच्छा,
1: उसका।
0: जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
1: उस पे
0: लोकगीत।
1: ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती

0: थी, गाने होते थे लाइक फागे होती थी,
1: हाँ
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा उपटा लगत उंगरिया मेरे, कहाँ ले आए
1: उपटा लगे तुंगरिये,
0: उंगरिया
1: क्या
0: मतलब
1: बात
0: ना
1: है।
0: कहाँ ले आए राजा
1: क्योंकि
0: पहाड़िया में,
1: मतलब
0: लाइक
1: बुंदेलखंड
0: कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये
1: हाँ
0: पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो लंपा लगत चुनरिया मेरे, कहाँ ले आए कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बम्बई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे सुन
0: बहुत ही
1: के
0: मजा आया, बहुत
1: तो।
0: मजा आया। तो
1: हाँ
0: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद,
1: अरे
0: और
1: बाबा
0: मैं नाइन्थ
1: रे,
0: क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम
1: आई
0: वो छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, हमारे
1: हाँ
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये।
0: हाँ बुंदेली में नाटक था। अब
1: हाँ
0: मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो मैं पहला नाटक था मेरा, तो
1: हाँ
0: उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का, जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ, फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर
1: पन्ना के
0: हैं,
1: ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2 2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं
1: वाह,
0: देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है।
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अभी
1: बात
0: है मुझे
1: है,
0: पहुंचना है NSD। तो फिर वहां
1: अभी
0: से
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी,
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम,
1: जाए। गोविंदा
0: गाना
1: की
0: गाना सुनता,
1: फिल्म।
0: तू पागल प्रेमी आवारा, दिल
1: हाँ
0: तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना,
1: हाँ
0: ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात
0: ओए।
1: है,
0: तो ये कुछ गाने हैं जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल वो एक जहन में बसे
0: बहुत
1: होते
0: ही
1: हैं और ये उस दौर की याद लेके
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं।
0: जी हमने
1: बातचीत
0: बहुत देखा है
1: करेंगे।
0: फिल्म को,
1: वाह।
0: बहुत देखा है फिल्म को हम, मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ
0: गुंडा,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: भी
1: है,
0: CD पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह। ये
0: हाँ
1: गाना सुनते
0: जी।
1: हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और
1: जी
0: ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय
1: मुलाकात
0: होता है जो
1: जी
0: तब तक एनएसडी में हैं
1: जी
0: और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए
1: दिखाई दे
0: और वो एक शिविर लगाते हैं
1: जी
0: और वहां से आपको एक राह दिखती है,
1: जी जी
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है
1: जी
0: और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा जिसका परिचय नहीं है उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है।
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ, तो अब मुझे तो कोई कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहाँ पे जाऊँगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडिया हाउस
1: तो
0: चले गए।
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में मैं ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th 10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं एनएसडी की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहाँ पहुँचा। उस समय मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुँचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं एनएसजी के गेट पे पहुंचा और मैं एनएसजी, मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नार विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक, उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी,
0: अरे
1: रिटायर्ड
0: बाप रे
1: फौजी थे वो।
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने कहा अरे अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा, मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
0: हाँ वो छोटा
1: छोटे
0: वाला।
1: वाला फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो
0: हाँ
1: मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है, बस
0: रिकॉर्ड कर
1: इसमें
0: दो।
1: रिकॉर्ड कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं,
0: अरे
1: तो
0: गजब।
1: तुम अनुशासित
0: उसने
1: हो,
0: 1 मिनट में सब बोल
1: सब
0: दिया।
1: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा, तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो
1: तो मैंने
0: कॉलेज
1: कॉलेज
0: किस
1: में,
0: शहर में था।
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराए उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर सत्यनाग का नाटक किया,
0: बिल्कुल।
1: और भी नाटक जो भी वो कराते थे उसमें, उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ, फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल।
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
0: अच्छा
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा, अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो, आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर या आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे बहुत बड़े कवि हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल। विहान
1: तो
0: ग्रुप।
1: अभियान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर हैं अलखनंदन सिन्हा जी, मैं
0: गजब।
1: अलख दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर
0: हाँ
1: वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूं, और मैं वैसे ही जा रहा हूं, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोचूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका है उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूँ। अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
0: बिल्कुल
1: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपका फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा,
0: रोशनपुरा चौराहे पर।
1: हाँ एक एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छुए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते। मैंने बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं। उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते, क्योंकि लोग अजीब के होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया, और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दरा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया।
0: पहले हेमंत आया।
1: हेमंत दादा आए पहले, और उन्होंने
0: अच्छा।
1: बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदिल है, तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले,
0: हाँ।
1: और तुमने बोला तुम गाने वाने गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं,
0: अरे
1: बड़े बड़े
0: बाप
1: मैंने
0: रे।
1: बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर।
0: अरे
1: मैं
0: बाप
1: बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये मुझे ताकत लगा रहा था, क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे
0: ज़्यादा।
1: चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उनने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं, हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे, वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया, एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ, तो उनने बोला कि अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको,
0: जरूर।
1: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
0: वाह
1: दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिच रही खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ
0: वाह
1: पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
0: शानदार है,
1: दद्दा
0: वाह
1: मोखा
0: वाह।
1: मेला जाने।

0: घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईयां लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने।
1: वाह वाह,
0: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, दद्दा मोखा मिला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं।
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने।
1: वाह वाह,
0: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, दद्दा मोखा मिला जाने।
1: वाह वाह।
0: आखिरी बंधे की दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला। फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया ले बुआई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई। कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, दद्दा मुखा मेला जाने।
1: कहते हैं देवेंद्र
0: के बचपन उस समय ये बुंदेलखंडी कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी, और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली, और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस ये खाना हो गया,
0: खाना हो गया, और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल फिर साफ करना है, चढ़ाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे, जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना, और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो। यार ये मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, ऐसे ने अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहां पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था, तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया। सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया, और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था,

0: तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की है और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है,
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का 7-8 मिनट का एक 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ
1: सुनेंगे।
0: ओके चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का
1: ओमकारा
0: गाना,
1: का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत
0: सुंदर
1: शानदार गाना
0: गाना
1: है।
0: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र
1: जी।
0: आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ, तो
0: इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलवी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चल पड़ा।
1: चालू हो गया। फिर उसके
0: क्या
1: बाद मैं
0: बात
1: पास
0: है।
1: आउट हुआ और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना मेरे ग्रुप में काम करना, तो
0: अच्छा,
1: एक ब्रिज मिल गया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन।
0: वो बोर्ड और
1: वो तो
0: वो
1: छूटे नहीं
0: अंदर
1: है, वो
0: जी याद आ
1: रिकॉर्डिंग तो
0: रहे।
1: छूटे नहीं है,
0: हाँ
1: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर
0: अच्छा।
1: एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ। मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था, 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ, और तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम
0: लेकिन
1: किया,
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन हो
1: हो
0: गया
1: गया,
0: और वहीं वो
1: और वो
0: धुरंधर जी
1: धुरंधर जी से
0: मिले
1: मिलना हुआ मेरा।
0: मिले धुरंधर जी।
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक। मैंने
0: हाँ
1: बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, यार ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे, और वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग
0: हाँ
1: कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे
0: बिल्कुल
1: दुनिया में होता है,
0: जी।
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब आप
0: हाँ,
1: वो
0: परिवार
1: प्यार
0: के एक
1: मिलता है, परिवार के
0: सदस्य।
1: सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप, तो
0: हाँ
1: उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसजी ने आपकी दुनिया को कितना बदला।
1: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया, उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, मेरा
0: बस
1: रोल भी खत्म मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी,
0: अच्छा,
1: क्योंकि मेरे
0: लेकिन
1: को,
0: ये फिर भाषा पर काम कैसे किया, ये
1: हाँ
0: बहुत
1: मैं
0: महत्वपूर्ण
1: बता
0: है।
1: रहा हूं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था, तो लोग हंसते थे, तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मेरा बहुत बड़ा मसला है। हाँ, तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके, कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा, मैं गलत बोलता था,
0: शक को साफ बोल रहे हो।
1: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता, जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया, जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे।

0: तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था, शामिल बोला था। मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम।
1: ओके
0: तो
1: ओके
0: ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया, और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनिरुद्ध खोटवर सर, और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे है, और लगातार बोलना है,
1: वाह
0: और
1: वाह
0: कैरेक्टर
1: वाह
0: बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी चीज़ जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की। और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियाँ कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहाँ से अपना रुझान बदला, और मैंने डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकेंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया, और फिर मैं उस तरफ आ गया। और फिर मैंने अपनी कहानियाँ लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस ज़मीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं, और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते हैं इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल।
0: तुम्हारी एफर्टलेस का दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा
1: तो
0: पूरा।
1: फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है आपने?
0: अभी दिल्ली पहुंचा, उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था, जिसका बहुत नाम हुआ उस समय। बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल।
0: बंसी कौल जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
1: मुखौटा।
0: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज एंड लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने, वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखे हमने, अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं। तो
1: वहां
0: हमने
1: से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1,000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है, और वहाँ पे एक गार्ड रहता है, और वहाँ पे फाटक है, और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए, वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिया किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने एक गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, कभी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था उस डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास, एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पर मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंच रहे हैं, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे, पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया।
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे ही शुरू होता है कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बता था कि वहाँ हर हाल में पहुँचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था,

0: और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे हो, शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हाँ, वो क्योंकि रेडियो को अंदा था, तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये इसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है। और
1: उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको,
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है। मैं एक इसकी छोटी सी कबीरी बता देता हूँ कि एक
1: बिल्कुल
0: छोटा सा सेंटेंस, जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये, एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख
1: बदल
0: दी,
1: दी।
0: बदल दी उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद
1: तो वो
0: है,
1: क्या कर
0: तो वो
1: सकता है।
0: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है, क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहाँ कहाँ पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: पै
1: बात
0: पै
1: है।
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी,
1: वाह,
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है,
0: ये
1: क्या
0: टाइटल
1: बात
0: सॉन्ग
1: है,
0: है।
1: बढ़िया गाना है।
0: जी जी
1: कैसा
0: जी
1: रिस्पॉन्स है इस नाटक का।
0: सर, जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो हैं, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, NMACC में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब
0: जी
1: सीरीज
0: जी
1: में।
0: स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया, उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी, जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और
1: हाँ
0: उससे राखी बनवा दी, तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा,
1: बेचारा।
0: अब वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से उसके पीछे घूमता है। बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा। वो मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर
1: बिल्कुल,
0: काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं,
1: वाह
0: तो काफी लोग उसमें थे। तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था। गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था।
1: सुनाओ ना।
0: अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है,
1: वाह
0: काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का
1: वाह,
0: गाना है कि बेचारा क्या
1: बिल्कुल
0: चाय
1: बिल्कुल,
0: चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह
0: पी के कहीं तो भूख में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे, नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या
0: उसके
1: सुंदर,
0: लिरिक्स ऐसे हैं। मतलब
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
0: मेरे
1: करके,
0: को बहुत खुशी
1: और
0: हुई
1: सबसे
0: आपसे।
1: अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
0: जी जी जी
1: तो फिर कभी मिलेंगे
0: 100%
1: और
0: सर,
1: आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती
0: बहुत
1: बुलाने
0: बहुत
1: के लिए।
0: शुक्रिया। मैं रेडियो का, मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती। मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर
1: हाँ
0: दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार। और
1: बिल्कुल,
0: बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत, इतना नहीं एक रेडियो में, और मैं
1: बिल्कुल
0: बड़ा मिस करता हूँ इसको। और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहाँ से कहूँ, जैसे गाने मैंने सुन सुन
1: क्या
0: के बड़ा
1: बात,
0: हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ, कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ, तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है, कि वो
1: क्या
0: गाना नहीं
1: बात है,
0: सुनता जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके
1: वहां
0: साथ
1: से
0: भी बैठा
1: यहां
0: हुआ
1: तक
0: था।
1: का
0: और
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके। और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंद दादा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता
1: बिल्कुल
0: रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
2: यूपी

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल।

हम आकाशवाणी ओपरा से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। श्रोताओं, आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों को संबोधित हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ आज मैं आपका अपना आशीष वर्मा। और दोस्तों आपका आज का ये कार्यक्रम समर्पित है आकाशवाणी के गौरवशाली आकाशवाणी 890 अभियान को, जिसके अंतर्गत देश भर में युवाओं को रेडियो, ज्ञान और संवाद की परंपरा से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में पीएम श्री बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज ओबरा जनपद सोनभद्र में आकाशवाणी के माध्यम से एक भव्य प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, समसामयिक विषयों की समझ और मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने की भावना को विकसित करना था। विद्यालय परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने अत्यंत उत्साह और ऊर्जा के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का वातावरण ज्ञान, जिज्ञासा और प्रतिस्पर्धा की भावना से सराबोर दिखाई दे रहा था। प्रतियोगिता में विभिन्न विषयों जैसे कि सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, खेल, साहित्य, भारतीय संस्कृति और आकाशवाणी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। विद्यार्थियों ने न केवल तेजी से उत्तर दिए बल्कि अपनी सूझबूझ और समझदारी का भी शानदार परिचय दिया। उनमें से कई प्रश्न ऐसे थे जिन्होंने बच्चों की स्मरण शक्ति और तर्क क्षमता दोनों की परीक्षा ली। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं केवल जीत हार तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम भी बनती है। मंच पर बोलने का आत्मविश्वास, टीम भावना, अनुशासन और सीखने की प्रेरणा बच्चों में

0: ये सभी ऐसे आयोजनों से विकसित होते हैं। आकाशवाणी ने पिछले 90 वर्षों में देश की संस्कृति, शिक्षा, संगीत, साहित्य और जन जागरूकता को घर घर पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इसीलिए रेडियो आज भी एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जानकारी, मनोरंजन और संवेदनाओं से जोड़ता है। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आकाशवाणी की पहुंच आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है, और जिसमें आपका अपना युववाणी कार्यक्रम युवाओं को अपनी बात रखने, अपनी प्रतिभा दिखाने और समाज से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। आज के डिजिटल युग में भी रेडियो की आत्मीयता और उसकी विश्वसनीयता लोगों के दिलों में कायम है। यही कारण है कि आकाशवाणी 890 केवल एक उत्सव नहीं बल्कि संस्कृति, संवाद और ज्ञान की उस परंपरा का सम्मान है जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी ओबरा द्वारा आयोजित इस प्रश्न मंच प्रतियोगिता के संपादित अंश। स्थलीय ध्वनिंकन और संपादन आशीष वर्मा और रानी राजश्री का, प्रस्तुति सहयोग अचल श्रीवास्तव का, और प्रतियोगिता के प्रस्तुतकर्ता हैं सचिन कुमार वर्मा। आइए सुनते हैं।
1: जैसा कि हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित भी हैं, इसीलिए क्योंकि आकाशवाणी अपने 90 वर्षों को सेलिब्रेट कर रहा है, और आप सभी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता के माध्यम से आप चीजों को समझेंगे, जानेंगे, और आकाशवाणी से यानी कि रेडियो से किस तरह से आपका जुड़ाव है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जैसा कि 90 वर्षों का ये जो सफर है, आकाशवाणी लगातार इतने वर्षों से समाचार के माध्यम से, जागरूकता अभियानों के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से जन जन तक यानी कि आम जनता तक पहुंच रखता है और चीजों के प्रति जागरूक करता है और समझदारी एक तरह से बढ़ाता है। और खासकर आप युवा हैं तो युवा को भी एक कनेक्शन के साथ ये जोड़ता है कि कैसे आप आगे चलकर क्या क्या स्कोप है, इसके बारे में भी आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आपको बताता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस प्रतियोगिता का। आकाशवाणी अपने प्रश्न मंच प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है आपके समक्ष, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जो हमारा पहला राउंड है वो है क्विज, यानी कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आप एक शॉर्ट आंसर देंगे, और इसके बाद हमारा जो दूसरा राउंड होगा एक्सटेम्पोर, यानी कि आपको सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें आप लगातार अपने चुने हुए विषय के बारे में आप बोलेंगे। और आकाशवाणी की तरफ से मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ रानी राजश्री, और
2: मैं आशीष वर्मा,
1: और हम सभी के साथ मौजूद हैं अचल श्रीवास्तव जी और कार्यक्रम अधिशासी हैं सचिन कुमार वर्मा जी। तो चलिए इस प्रतियोगिता के पहले राउंड की शुरुआत करते हैं क्विज के इस राउंड के साथ।
2: तो टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी, आप सभी लोग तैयार हैं? तो फिर प्रश्नों की वर्षा की जाए। चलिए ठीक है, प्रश्न मंच पहला राउंड यहीं से शुरू होता है, और आपके लिए पहला प्रश्न यही है, आकाशवाणी ओबरा की फ्रीक्वेंसी क्या है?
3: टीम सी।
2: टीम सी ने हाथ सबसे पहले उठाया है, बताइए।
4: आकाशवाणी ओबरा की फ्रीक्वेंसी है 102.7।
2: बहुत सही, 102.7। और दूसरा प्रश्न अब आपके लिए ये है कि आकाशवाणी इस साल अपने कितने वर्ष पूरे कर रहा है? टीम सी ने सबसे पहले हैंड राइज किया।
4: आकाशवाणी इस साल अपने पूरे 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है।
2: बहुत बधाई, बहुत सही उत्तर आपने दिया। आकाशवाणी इस बार अपने 90 वर्ष की गौरवशाली यात्रा को पूर्ण कर रहा है। और अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
5: और अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
2: फिर से टीम सी, क्या बात है,
4: 14 सितंबर।
2: बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
5: और अगला प्रश्न है कि जैसा कि संविधान हमें हर चीज का अधिकार देता है, तो ये लागू कब हुआ था हमारा संविधान?
2: टीम डी,
6: हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था।
2: बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब,
3: बिल्कुल सही जवाब।
2: और कैसा लग रहा है आप लोग को ये बताइए पहले, अच्छा लग रहा है, तैयार है? चलिए ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टीम सी का कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा दिख रहा है। हम लोग का जो ओबरा शहर है या जनपद सोनभद्र, किस चीज के लिए मशहूर है, किस चीज के लिए इसे जाना जाता है?
3: टीम सी।
2: टीम सी ने हैंड राइज किया है
4: विद्युत उत्पादन के लिए।
2: बहुत सही जवाब। यही तो ऊर्जा की नगरी बोलते हैं।

0: ऐसे हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आकाशवाणी आपको यही चीजें समझाती है, यही चीज बताती है कि अपनी जो भी बात है उसको बेधड़क बोलिए, कहना सीखिए, बोलना सीखिए। तो अपने दिल की बात दिल में नहीं रखिए, कोई माइनस मार्किंग नहीं, आप लोग भी प्रयास करिए। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा,
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य है, मतलब किस संस्था से जुड़ा है?
0: टीम मेड।
2: ये वाक्य जो है वो आकाशवाणी संस्था से है।
0: बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब। इसका अर्थ मालूम है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये प्रश्न नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल। और अब आप सभी के लिए अगला प्रश्न, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा और उत्तर दीजिएगा। प्रश्न बहुत आसान है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
1: टीम बी।
2: पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।
0: गलत जवाब। अब हम जाते हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए टीम डी के पास।
3: लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था।
0: बिल्कुल सही जवाब, लाल बहादुर शास्त्री जी का कहना था जय जवान जय किसान। अब अगले प्रश्न की बारी है, ठीक है?
1: अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है,
0: जिसे हम योगा डे कहते हैं?
1: टीम डी
0: हैंड राइज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है।
2: 21 जून को।
0: बस यही तो सही जवाब है, 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसे किसने लिखा है?
1: टीम डी।
3: सारे जहां से अच्छा इकबाल जी ने लिखा है।
0: बहुत सही जवाब, मोहम्मद इकबाल की ये रचना है सारे जहां से अच्छा।
1: अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
0: टीम डी। एक बार फिर से हाथ उठाते हुए,
3: भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है।
0: हाँ बिल्कुल सही जवाब। आपको उत्तर पता था तो हाथ उठाने में देर क्यों की?
1: जैसे ही लगे कि आंसर आ रहा तुरंत।
0: हाँ, साइना नेहवाल किस खेल के लिए जानी जाती हैं? टीम ए ने हाथ उठाया है, बताइए।
2: बैडमिंटन।
0: बिल्कुल सही जवाब। और अब आपके लिए अगला प्रश्न आ रहा है, ये
1: भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
0: टीम सी।
2: थार डेजर्ट।
0: थोड़ा कॉन्फिडेंस।
2: थार डेजर्ट।
0: बिल्कुल सही जवाब। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? टीम बी।
2: 5 जून।
0: बहुत सही। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
1: और ये राउंड लगभग आधा हो चुका है, कैसा लग रहा है? सही है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं?
0: टीम सी।
2: भारतीय संसद के दो सभा होती है, एक लोकसभा एक राज्यसभा।
0: बिल्कुल सही जवाब। आकाशवाणी, जिसे हम शॉर्ट में AIR भी कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है AIR का? टीम ए,
3: ऑल इंडिया रेडियो।
0: बिल्कुल, टीम ए ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है और इसका सही जवाब है ऑल इंडिया रेडियो। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
1: ऑस्कर पुरस्कार ये किस फील्ड के लिए, किस क्षेत्र से संबंधित है?
0: टीम ए,
2: खेल कूद।
0: सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। और अब बताइए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? टीम डी हैंड राइज करते हुए।
3: भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे।
0: बहुत सही जवाब, टीम डी लगातार आगे अपनी बढ़त बढ़ाते हुए।
1: और अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? टीम सी।
2: मार्स को।
0: सही जवाब, इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस।
2: मार्स को लाल ग्रह।
0: सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत बढ़िया। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? टीम सी।
2: रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी थे।
0: बिल्कुल सही जवाब।
1: और इस राउंड का आखिरी प्रश्न, और वो है कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टीम डी।
3: कबड्डी के टीम में 6 होते हैं, एक्स्ट्रा रखा जाता है।
1: एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
0: बिल्कुल। तो अब हमारा पहला राउंड यहीं समाप्त होता है, दूसरे राउंड की ओर हम आगे बढ़ेंगे बस अब से थोड़ी ही देर में, जहां आपको कुछ पर्चियां दी जाएंगी और उस पर्ची में जो भी सब्जेक्ट जो भी थीम आपको मिलेगी उसी पर आपको 2 मिनट लगातार बोलना होगा, बस हम दूसरे राउंड के साथ तुरंत हाजिर होते हैं।
4: आकाशवाणी @90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब दूसरे राउंड की प्रतियोगिता के साथ हम फिर से हाजिर हो चुके हैं। दूसरा राउंड जिसमें आप सभी को किसी एक विषय पर बोलना है और इसके संदर्भ में आप लोगों को पर्चियां मिल चुकी हैं, टॉपिक्स मिल चुके हैं, तो आप सब तैयार हैं? ठीक। नियम और शर्त बस इतनी है कि 2 मिनट का आपको समय मिलेगा जिसमें आपको जो विषय आपको मिला उस पर अपनी बात, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, आपको बताना है 2 मिनट लगातार। इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 5 अंक मिलेंगे, वो भी आपके प्रेजेंटेशन पर और आपका जो कंटेंट है उसको ध्यान में रखते हुए। तो टीम ए, टीम बी, टीम सी और डी, तैयार आप लोग? तो चलिए पहले हम जानते हैं कि आपको टॉपिक्स क्या क्या मिले हैं। टीम ए,
4: करें योग रहे निरोग।
3: आपको कैसा लगा ये टॉपिक?
5: बहुत अच्छा है टॉपिक।
3: टीम बी, आपको क्या टॉपिक मिला?
6: रेडियो का महत्व।
3: टीम सी, आपको क्या टॉपिक मिला?
7: स्वच्छता पे टॉपिक मिला है।
3: स्वच्छता पे, बहुत अच्छी बात। टीम सी,
8: आत्मविश्वास का महत्व।
3: आत्मविश्वास अंदर का कह रहा है कि हम इस विषय पे बोल लेंगे?
8: हाँ, कह रहा है।
3: बहुत अच्छी बात। तो चलिए चारों टीम अपने अपने टॉपिक्स के साथ तैयार हैं। चारों टीमों को बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं कि टीम ए आए और अपने विषय के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करें।
9: तो अपना परिचय दें, यहाँ से शुरू करते हैं।
10: मेरा नाम अनीता वर्मा है, मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ और मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है, करे योग रहे निरोग।
9: आपका परिचय?
11: मेरा नाम रश्मि है, मैं क्लास 12th की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ओबरा सुरभद्र है और मेरा टॉपिक है करे योग रहे निरोग।
10: आज हम योग के बारे में आप सभी लोगों को एक जानकारी देंगे। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और योग के गुरु का नाम है गुरु वशिष्ठ। योग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, यूज शब्द से मिलकर बना है। योग हमारे शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं पर प्रभाव डालता है जो हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। आजकल के अशुद्ध वातावरण में हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है ये हमें योग सिखाता है। हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। योग हमें एक प्रशिक्षित गुरु के माध्यम से सीखना चाहिए जिससे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे। योग हमेशा खुले एवं स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए। योग के बारे में हमें कुछ जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से भी मिलती है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें योग करने से हमारे मन को एकाग्रता पर ध्यान देता है जो हमें पढ़ाई, खेल कूद एवं अन्य सभी समस्याओं में भी समाधान करता है। योग करने से हमारा मन एकाग्रत रहता है।
9: टीम ए ने बहुत बढ़िया प्रयास किया और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं टीम बी। आपके परिचय के साथ शुरुआत करते हैं।
12: मेरा नाम रिया है, मैं क्लास 12th की छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों को रेडियो का महत्व बताने जाती हूँ।
9: और आपका परिचय?
13: आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम पूजा है, क्लास 12th बी की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र है और आज मैं रेडियो के महत्व के बारे में कुछ चर्चा करूँगी। और आप सभी को आकाशवाणी की 90 वर्ष की बधाई। समाज में आकाशवाणी के मतलब कार्य, अगर आकाशवाणी में मतलब जैसे मनोरंजन का साधन हो गया, उसमें देशभक्ति सॉन्ग और जैसे किसी का मन या मनोबल उसको मनोरंजन के लिए ठीक करने का होता है, जागरूकता में सहायक है। जैसे कि किसी का मतलब कार्य में ध्यान ना हो उसे जागरूकता रेडियो मतलब जो आकाशवाणी है उसे सहायक करता है। और जहाँ इंटरनेट की पहुँच है वहाँ आकाशवाणी की पहुँच है। और किसान को खेती बाड़ी में मदद करता है, जैसे खाद को कौन सा खाद डालना है और मतलब किस चीज़ का सिंचाई करना है, उसे कैसे बचाव करना चाहिए और उसके बारे में किस कीड़े मतलब रोक नहीं रख सकते।
9: ओके, और अच्छा प्रयास रहा। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं टीम सी को। आपका परिचय?
14: मेरा नाम शैल कुमारी, मैं क्लास 11 की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र है। आज हम आत्मविश्वास का महत्व टॉपिक पे कुछ चर्चा करेंगे।
15: मेरा नाम पलक सिंह है, मैं क्लास 10A की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जो ओबरा सोनभद्र में स्थित है। और हम आज जो हमारा विषय है आत्मविश्वास का महत्व, उस पर चर्चा करेंगे।
9: बोलिए, टाइम शुरू होता है।

0: ऐसा कहा जाता है कि यदि मानव के अंदर उसका आत्मविश्वास है तो वह बड़ी सी बड़ी सीढ़ी, बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है। किंतु अगर मानव के अंदर उसका आत्मविश्वास, उसका मनोबल, उसके अंदर की वो धारणाएं जिसके वजह से वो कार्य करता है वही खो जाए, तो क्या मनुष्य के अंदर कोई साहस रहेगा कि वो कुछ करे, आगे बढ़े? यदि अगर मनुष्य अपना आत्मविश्वास ही खो दे तो वो अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, उसे हर कार्य से डर लगेगा। अक्सर हमारे समाज में स्त्रियों को कहा, कुछ भी कार्य करने के लिए कह दिया जाता है कि अरे ये क्या करेगी, इससे वो अपना आत्मविश्वास अक्सर खो देती है। सोचती है कि जब लोग मुझे ऐसा कह ही रहा है तो क्या मैं सही में नहीं कर पाऊंगी। वो पहले ही उस कार्य को छोड़ देगी जो जिसका करने का उसके अंदर धारणा रहेगी। यदि वो अपने साहस को बनाए रखे, हमारे देश की ऐसी वीरांगनाएं थी जिन्हें हम देख के आज भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि क्रीड़ा के क्षेत्र में साइना नेहवाल और आकाश को छूने वाली कल्पना चावला, सुनीता विलियम जैसे, और सबसे बड़ी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिसे हमारा भारत आज भी नहीं भूल पाया है। यदि हम उनके बारे में चर्चा करें तो हमारा आत्मविश्वास आज भी जागृत रहेगा। और ऐसा अब हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खासकर हमारे समाज को सही करना जरूरी है, जो हमें अक्सर ये कहता है कि तुम नहीं कर पाओगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हमेशा कहते हैं कि यदि मनुष्य आत्मविश्वास पर निर्भर रहेगा तभी हमारा देश जो है वो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेगा, तभी यह एक आत्मविश्वासी भारत बन सकेगा। यदि मनुष्य ही अपना आत्मविश्वास मनोबल खो देगा तो दूसरा देश हमारे देश के आगे प्रचलित होता जाएगा एवं हमारे देश की सीढ़ियां पीछे गिरती चली जाएंगी। इसीलिए हमें अपने मनोबल को हमेशा कायम रखना चाहिए। आकाशवाणी ओबरा द्वारा रविवार को बाल गोपाल नाम का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें हमें ऐसी वार्ताएं सुनने को मिलती हैं जिसे हम सुन के अपने मनोबल को भी बढ़ा सकते हैं एवं अपने हर काम को करने के लिए अग्रणी रह सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और आत्मविश्वास का महत्व टीम सी का टॉपिक था और बेहद आत्मविश्वास के साथ इन्होंने इस टॉपिक को कहा।
2: और अब दूसरे राउंड में टीम डी हमारे सामने है, अपना परिचय दीजिए।
3: मेरा नाम दिव्यांशी कुमारी है, मैं क्लास 12 से हूँ, मैं पीएम श्री गर्ल्स इंटर कॉलेज से हूँ। आज मैं आप सभी के सामने स्वच्छता के बारे में कुछ बताना चाहूंगी।
4: मेरा नाम सृष्टि केसरी है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, ओबरा सोनभद्र। मैं स्वच्छता के बारे में बताना चाहती हूँ।
2: चलिए ठीक है, टीम टी स्वच्छता के साथ तैयार है।
3: स्वच्छता एक ऐसी चीज है जिसे हर स्तर पे उसको पूरा करना जरूरी है, चाहे वो हमारे शारीरिक हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो। जैसे हम पर्यटक के क्षेत्र में अपने घर, खुद अपने शरीर का स्वच्छता, जैसे कई एरिया में स्वच्छता रख सकते हैं। स्वच्छता से हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि अगर हम अपने यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं, जहाँ हमारे यहाँ विदेशों से पर्यटक आते हैं, अगर हम वो स्थल साफ रखें, स्वच्छ रखें, तो हमारा जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। और हमारे ओबरा में उपस्थित आकाशवाणी ओबरा केंद्र, जहाँ से हमें अपने एरिया को या फिर अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया जाता है। स्वच्छता का अभियान हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म अवसर के पर्व पे 2 अक्टूबर को हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छता का अभियान शुरू किया है। स्वच्छता से लाभ बहुत सारी हैं, बहुत सारी हानियां भी हैं। जैसे लाभ से तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लाभ होते हैं, बट मैं हानियां कुछ बताना चाहूँगी कि अगर आप जल को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हैजा, पेचिस और मलेरिया, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं आने वाली जनरेशन से उम्मीद करना चाहूंगी कि हर तरफ से स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, ताकि हमारा देश एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित राज्य देश बन सके।
2: बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। चारों टीम परफॉर्म कर चुकी है और अब समय है उस निष्कर्ष पे पहुंचने का जहां पर आप सभी विजेता टीम का इंतजार कर रहे हैं। तो हम हाजिर हैं रिजल्ट के साथ, और रिजल्ट ये है कि टीम सी इस प्रतियोगिता की विनर रही है। जोरदार तालियां हो जाए। और इस टीम में शामिल थी पलक सिंह और श्रीजल कुमारी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियों से आप लोगों को। और इसके साथ ही टीम बी, टीम डी और टीम ए, आप लोग को भी जो भी आपने प्रयास किया अपनी क्षमता के साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये प्रश्न मंच यहीं समाप्त होता है।
5: कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को सम्मानित तो किया ही गया, साथ ही सभी विद्यार्थियों को भविष्य में भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। विद्यालय परिवार और आकाशवाणी के इस संयुक्त प्रयास ने निश्चित रूप से विद्यार्थियों के मन में सीखने और आगे बढ़ने की नई प्रेरणा जगाई है। आज के समय में जब युवा मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित होते जा रहे हैं, तब आकाशवाणी जैसे मंच बच्चों को ज्ञान, संस्कृति और सकारात्मक संवाद से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। प्रश्न मंच प्रतियोगिता के सफल समापन के पश्चात विद्यालय की प्रधानाध्यापिका इस विशेष आयोजन की प्रशंसा करते हुए अपने शब्दों में कहा,
6: मैं अलका वर्मा, प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र की तरफ से आकाशवाणी के इस समस्त परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम कराकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। और मैं यही अपेक्षा रखती हूँ कि आगामी दिनों में भी आकाशवाणी द्वारा ऐसा कार्यक्रम किया जाए ताकि बच्चों का मनोबल और भी अच्छा हो, और इनके द्वारा जो प्रयोग किए गए हैं वो भी और भी सार्थक हो, बच्चों में इसकी सूचना और भी अच्छे तरीके से जाए। इस बात के लिए मैं आकाशवाणी समूह को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।
7: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल, और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
5: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
8: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
9: हेलो,
5: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
8: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
5: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
8: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
5: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಟ್ ನೈಂಟಿ ನಬ್ಬೆ ಸಾಲ್ ಕಿ ಆವಾಜ್ ದಿಲ್ ಸೆ ದಿಲ್ ತಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಧಮಾಲ್ ಪುರಾನಿ ಯಾದೇ ನಯಾ ಜೋಶ್ ಹೈ ದೇಶ್ ಕಾ ರೇಡಿಯೋ ಅಬ್ ಭಿ ಬಾಸ್ ಹೈ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೆ ಗೌರವಮಯಿ ನಬ್ಬೆ ಸಾಲ್
1: तो दोस्तों आकाशवाणी 890 केवल एक उत्सव नहीं बल्कि नई पीढ़ी को देश के संस्कृति और बौद्धिक विरासत से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। हमें उम्मीद है कि पीएम श्री बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज परिवार इस आयोजन का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। बस इन्हीं बातों और विचारों के साथ आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये अंक, आज की ये प्रस्तुति आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और अब कार्यक्रम से मुझे यानी आशीष वर्मा को दे अनुमति, सुनते रहें

हम आकाशवाणी उभरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

बहनों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सूर्या। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, खुश और अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक होंगी। बहनों, सुबह से लेकर रात तक घर और परिवार की जिम्मेदारियों में आप सभी कितनी मेहनत करती हैं, यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने स्वास्थ्य और खुशियों का भी जरूर ध्यान रखें। तो बहनों, बताइए कैसा चल रहा है आपका दिन? घर परिवार में सब कुशल मंगल है ना? क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है, ऐसे में अपने परिवार का ध्यान रखना आप ही की जिम्मेदारी है। बहनों, तेज गर्मी से बचने के लिए आप घर के सभी सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और खुद भी पिए। नींबू पानी, छाछ, लस्सी और ताजे फलों का सेवन करें। बाहर निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढके और धूप में ज्यादा देर तक रहने से भी बचें। बहनों, बच्चों और घर में अगर बुजुर्ग रह रहे हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी का असर उन पर जल्दी होता है। घर में हल्का और पौष्टिक भोजन बनाएं। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर आप अपने परिवार को गर्मी से सुरक्षित और स्वस्थ रख सकती हैं। बहनों, बातें तो होती ही रहेंगी, चलिए फिलहाल कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं आज होने वाली चर्चा का विषय। आज हम बात करेंगे शिक्षित और जागरूक महिलाओं से सवरता घर, रेडियो के 90 वर्षों का सुनहरा सफर और आत्मविश्वास बनाए रखे विषय पर। साथ ही सुनेंगे रेडियो के 90 वर्षों के सुनहरे सफर पर एक विशेष कार्यक्रम और गीत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। बहनों, घर की खुशियां, प्यार और संस्कार एक महिला से ही जुड़े होते हैं। जब

0: महिला शिक्षित और जागरूक होती है तो वह अपने परिवार को अच्छे संस्कार, सही शिक्षा और बेहतर सोच देती है। इनकी समझदारी से घर में सुख, शांति और अपनापन बना रहता है। मैंने शिक्षित महिला अपने बच्चों को पढ़ाई, परिवार के स्वास्थ्य और घर की जरूरतों का अच्छे से ध्यान रखती है। वह समय के साथ नई जानकारियां सीखती हैं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बहनों, जागरूक महिला बेटा और बेटी में फर्क नहीं करती। वह दोनों को समान प्यार और अवसर देने की सोच रखती है। ऐसी सोच से ही परिवार मजबूत बनता है और समाज में भी अच्छा संदेश जाता है। बहनों, शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि सही सोच और समझ भी देती है। बच्चे भी वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। इसीलिए माँ की शिक्षा और व्यवहार का सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बहनों, आज के इस बदलते समय में देखा जाए तो महिलाओं का जागरूक होना बहुत जरूरी हो गया है। नई तकनीक, शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि एक जागरूक महिला ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छे से समझती है। बहनों, एक अच्छी बात यह भी है कि आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर वे डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, अधिकारी और यहाँ तक कि एक व्यवसायी बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। साथ ही साथ वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी प्रेम और समझदारी से निभा रही हैं। बहनों, जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। इसीलिए हमें मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने घर की हर बेटी और महिला को शिक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर जरूर देंगे, क्योंकि शिक्षित और जागरूक महिलाओं से ही घर संवरता है, समाज मजबूत बनता है और देश प्रगति करता है। बहनों, अभी हम बात कर रहे थे शिक्षित और जागरूक महिलाओं से संवरता घर विषय पर। अब हम बात करेंगे एक ऐसे साथी की जो सालों से हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। जी हाँ, रेडियो। मैं बात कर रही हूँ रेडियो की। बहनों, रेडियो का सफर लगभग 90 वर्षों से भी अधिक पुराना है। भारत में इसकी शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई थी। समय के साथ यह सिर्फ एक साधारण उपकरण नहीं रहा, बल्कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। पहले के समय में जब टीवी और मोबाइल नहीं होते थे, तब रेडियो ही मनोरंजन और जानकारी का मुख्य साधन था। उस दौर में लोग रेडियो में समाचार, गीत संगीत और नाटक सुनते थे। खास बात यह है कि रेडियो ने महिलाओं को भी बहुत सशक्त बनाया है। घर के काम करते करते महिलाएं रेडियो के माध्यम से नई नई बातें सीखती रहीं, चाहे वह स्वास्थ्य की जानकारी हो, बच्चों की देखभाल हो या सरकारी योजनाओं की जानकारी। बहनों, आज के समय में रेडियो और भी आधुनिक हो गया है। अब हमारे पास एफएम रेडियो, मोबाइल रेडियो और इंटरनेट रेडियो जैसे कई साधन हैं। बहनों, रेडियो का यह 90 वर्षों का सफर सच में बहुत ही सुनहरा रहा है। यह हमें जोड़ता है, सिखाता है और हमारे जीवन में खुशियां भरता है। इसी के साथ चलिए सुनते हैं रेडियो के 90 वर्षों के सुनहरे सफर पर ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें दीपा वर्मा जी से बात कर रही है हमारी बहन साजिदा।
1: आज हम बात करेंगे रेडियो के 90 वर्षों का सुनहरे सफर के बारे में, और आज हमारे साथ हैं दीपा वर्मा जी। तो दीपा जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए।
2: जी, मैं ओबरा सोनभद्र की रहने वाली हूँ। नाम मेरा दीपा वर्मा है, ब्यूटिशियन का भी काम करती हूँ।
1: जी जी। तो दीपा जी, ये बताइए कि आपका रेडियो से जुड़ाव कैसा रहा?
2: जी, रेडियो से जुड़ाव तो काफी पुराना है मेरा।
1: जी जी।
2: जैसे सुबह सुबह मेरा काम

0: है कि रेडियो से मैं कोई चैनल वगैरह चेंज नहीं करती हूँ, बस एक स्विच ऑन करती हूँ। और काफी दिनों से पुराना,
1: जी
0: जब ओबरा में विविध भारती भी अभी नहीं चलता था, तब से मैं सुन रही हूँ। विविध
1: अच्छा
0: कार्यक्रम जो आते थे सब कुछ मुझे, मतलब बिल्कुल याद हो चुका था वो चीज कि कितने
1: जी
0: बजे
1: जी
0: क्या प्रोग्राम आएगा, क्या आएगा। तो इसलिए अच्छा इसलिए है, जुड़ाव इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें समय समय पर हर घंटे या 2 घंटे के बाद, जैसे उसमें मनोरंजन के कार्यक्रम आ गए, सुबह सुबह भक्ति गीत आ गए, गजल आ गए, फिल्मी है, समाचार है, लोक संगीत है, खेती बाड़ी के कार्यक्रम है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां बहुत मिलती हैं, विज्ञान के बारे में मिलता है, शिक्षा के बारे में मिलता है। इसलिए मतलब कुल मिला के जो हमें जीवन की आवश्यकताएं हैं, सारी आवश्यकताओं की ये रेडियो पूरा कर देता है। अगर दिन भर अगर आप सिर्फ ऑन कर दीजिए और घर के काम भी कीजिए तो आपके कानों में जाता है, तो जानकारियां मिल जाती हैं।
1: जी। और इसके बाद, इसके साथ सबसे अच्छा यही है कि इसके साथ बिल्कुल बैठना नहीं पड़ता
0: जी
1: है,
0: हाँ, एक
1: आप
0: जगह
1: अपना
0: बैठना,
1: हाँ
0: हाँ, ये
1: काम
0: बहुत
1: करते
0: सही
1: रहिए
0: है।
1: और
0: हाँ
1: सुनते रहिए। तो आपने तो इतने सारे रेडियो के प्रोग्राम के बारे में बताया, तो आपको सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा लगता है और क्यों?
0: जी, सबसे पहले तो रेडियो में जो भी, हम अपने ओबरा की बात बताऊं कि जैसे जो सुनना है हमारा यहीं रहना है, यहीं पैदाइशी, यहीं सुना, तो जितने भी कार्यक्रम हमने सुना है मुझे सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। और खास करके जो सुबह सुबह भक्ति संगीत आता है ये भी बड़े प्यारे लगते हैं। और जो हमारा ये क्षेत्र है सोनभद्र का, वो कृषि प्रधान क्षेत्र है,
1: जी
0: तो खेती बाड़ी के लिए जिस तरह हमारा उपज की मात्रा बढ़े, किसानों को फायदा हो, इस तरह के कार्यक्रम भी आते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनको फायदा हो जाता है। और खास करके उनके तक जो इस चीज को करते हैं खेती बाड़ी, उनके तक पहुंचता है तो वो और अच्छी उपज की मात्रा बढ़ा लेते हैं। गजल बड़ी अच्छे आते हैं
1: जी जी
0: हमारे रेडियो में यहाँ पे, गजल और आवाज तो इतनी क्लियरिटी है ना कि मन खुश हो जाता है सुनने में,
1: जी जी
0: तो इसलिए मैं तो बहुत सारे कार्यक्रम सुनती हूँ जब समय मिलता है।
1: जी। तो आपने बताया कि आप पार्लर चलाती हैं, तो पार्लर में वैसे भी आप ऑन कर देती होंगी।
0: जी जी हाँ, ऑन कर देती हूँ और सुनती रहती हूँ। जैसे सुबह से तो जो फिल्मी गीते देते हैं विविध भारती का कार्यक्रम, बड़े अच्छे अच्छे पुराने पुराने गाने मिलते हैं सुनने को,
1: जी।
0: मन खुश हो जाता
1: तो
0: है,
1: आप गीत भी सुनती होंगी, इधर आपका काम भी
0: काम भी
1: होता
0: होता
1: रहता
0: है।
1: है। चलिए, ये तो
0: हाँ
1: बहुत अच्छा है। तो दीपा जी, ये बताइए कि आज के समय में रेडियो का कितना महत्व है?
0: जी, आज के समय में रेडियो का जैसे पहले महत्व था आज भी है।
1: जी
0: लोगों की थोड़ी चॉइसें बस चेंज हुई है और कुछ नहीं है, बस अगर आप सुनने लगिए तो सभी उपलब्ध है, बस आप उसको सुनना तो चाहिए।
1: जी
0: जब आप सुनिएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा और कोई खर्च भी नहीं है। जैसे मैं मोबाइल चार्ज करने होते हैं, टीवी चार्ज करने पड़ते हैं, इसमें तो ऐसा कोई साधन है ही नहीं,
1: जी।
0: तो कार्यक्रम तो आपको हर तरह का मिलेगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो और आपके रोजगार के लिए भी लाभदायक हो, आपके कृषि के लिए, मतलब बच्चों के कार्यक्रम हो गए, मतलब इसमें विविधता इसलिए है, महत्व तो इसलिए हमारा इसमें ज्यादा अच्छा है कि इसमें चाहे बड़े बुजुर्गों के कार्यक्रम हो, हर तरह के कार्यक्रम है कुल मिला के।
1: जी, सभी लोगों के लिए प्रोग्राम है और मनोरंजन का भी खास ध्यान रखा गया है। तो दीपा जी, ये बताइए कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में रेडियो की कितनी भूमिका है?
0: जिस शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मतलब बहुत ज्यादा भूमिका है। क्यों है ये? क्योंकि ये सस्ता भी है, सुलभ भी है, व्यापक रूप से भी है और दूरस्थ शिक्षा जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं, रेडियो
1: जी
0: के माध्यम से अपनी बातों को उन विद्यार्थियों तक पहुँचा लेते हैं, सिर्फ सुनकर हम ग्रहण कर लेते हैं।
1: जी
0: और जन शिक्षा के लिए भी सबसे उपयोगी है, ग्रामीणों के लिए सबसे उपयोगी है, वंचित क्षेत्रों के लिए सबसे उपयोगी है जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं लोग, जैसे नदी नाले पहाड़ हैं, क्या क्या है वहां तक हमारा रेडियो तो कम से कम पहुंच जाता है।
1: जी
0: और इसलिए है, दूसरी चीज है, इसमें ज्ञान की बातें मिलती हैं, स्वास्थ्य की बातें मिलती है, पोषण है, जीवन उपयोगी बातें मिलती हैं, सब
1: जी
0: कुछ है इसमें, इसलिए सबसे बहुत बढ़िया है। और इसलिए महत्व है कि इसमें आपको मीना की दुनिया भी एक तरह के कार्यक्रम आते थे, बुजुर्गों के लिए भी आते हैं कि
1: जी
0: उनके मौसम के हिसाब से उनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम आती है उसकी सुविधाएं वो बताते हैं कि आप ये खाने पीने के लिए इस्तेमाल कीजिए, मौसम के अनुसार आप ये खाइए, गर्मी है तो आप क्या इस्तेमाल कीजिए, ठंडी है तो आप क्या इस्तेमाल कीजिए, और तो शरीर हमारा स्वस्थ रहे। और
1: तो दीपा जी, ये बताइए कि रेडियो के जरिए समाज में तो कितना बदलाव आया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का हो, या फिर जागरूकता के हो।
0: समाज में बात करूं बदलाव की, तो पहले जो है काफी उपेक्षित था, जैसे उपेक्षा की बात करूं कि गरीबी अमीरी का, लड़का लड़कियों में भेदभाव,
1: जी
0: महिलाओं को रोजगार की ये सब चीज, और जो महिलाएं आज ग्रामीण स्तरों पर कार्यक्रम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, जिससे जैसे कह सकते हैं स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के हर वर्गों के लिए रोजगार की, ये सब भी बातें जो है ना शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव आया है। जब शिक्षा मिली समाज को तो समाज में बदलाव आया, और ये रेडियो जो है जो हमारे को हर तक पहुंचा दिया इस चीज को कि आप लोग इस तरह से बदलाव लाइए अपने आप में।
1: जी जी,
0: जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो बदलेंगे कैसे।
1: बिल्कुल।
0: और समाज में एक बदलाव ये आया जो जैसे सरकार ने हमारे लिए छोटी बच्चों के लिए अगर घर में बच्ची पैदा होती है तो सरकार ने एक सुकन्या समृद्धि योजना भी स्टार्ट की, शुरुआत किया
1: जी,
0: जो 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए है। कम से कम आप 250 रुपए जमा करके इसको शुरुआत कर सकते हैं।
1: जी जी,
0: तो इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर बिटिया 18 साल की होती है तो 50% पैसे निकाल सकती है। ये गांव तक नहीं पहुंच पाया अभी तक भी, बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। शहरों में तो इतना प्रचार प्रसार होता है, लोग जान जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये बातें नहीं पहुंच पाई हैं। तो ये जानकारी रेडियो अगर हमको पहुंचा दे रहा है तो उनकी जागरूकता के लिए, उनकी बच्चियों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है।
1: जी जी,
0: 21 साल होने पर वो पूरे पैसे अपने निकाल सकती हैं।
1: जी,
0: तो छोटे छोटे अमाउंट जमा तो कर सकते हैं।
1: जी जी, और इसकी भी जानकारी मिली रेडियो से।
0: रेडियो से ही, हाँ, क्योंकि गाँव स्तर में बहुत सारा जो आज आधुनिकता है, मोबाइल है, बहुत सारे चीज है, नेटवर्क नहीं है, लेकिन रेडियो तो पहुँच जा रहा है।
1: रेडियो पहुँच जा रहा है, और इसीलिए कहा जाता है कि रेडियो के जरिए ही जागरूकता फैली है।
0: जी,
1: और देखिए अब के समय में बेटा बेटी में भेद भी कम हुआ है।
0: कम क्या, बहुत खत्म हो गया है एक तरह से।
1: हाँ
0: जी, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा दिया। निडरता से भेज रहे हैं पढ़ने के लिए।
1: जी, जी।
0: गांव के लोग भी भेज रहे हैं सरकार। हाँ, ने यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लड़कियों को रहने के लिए हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है, ताकि बच्चियां पढ़ें और वहां रहें।
1: जी जी,
0: ताकि उनका पोषण भी अच्छा मिले
1: और शिक्षित भी हो जाएंगी।
0: शिक्षित, हाँ,
1: जब शिक्षित होंगी तभी तो आगे भी बढ़ सकेंगी।
0: जी हाँ।
1: तो दीपा जी, रेडियो के जरिए लोगों का मनोरंजन तो होता ही है, तो आप बताइए कि आपको किस तरह के गीत संगीत पसंद है।
0: संगीत गीत की बात करूँ तो सब तरह के संगीत पसंद है।
1: जी जी,
0: मैं हर तरह का संगीत सुन लेती हूँ। लोक संगीत हो गया, चाहे फिल्मी संगीत हो गया, गजल हो गए, सभी अच्छे लगते हैं।
1: अच्छा, यानी कि हर तरह का।
0: हाँ हाँ, भक्ति संगीत हो गए, सभी तरह के सुन लेती हूँ।
1: जी, तो गीत संगीत की बात हो रही है तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
0: मशहूर सिंगर आशा भोसले जी का निधन 12 अप्रैल को हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि एक आशा भोसले जी का कोई भी गाना अच्छा सा सुनवा दीजिए। हाँ
1: चलिए, ठीक है, हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे
0: जी।
1: और आप सुनिए प्यारा सा गीत।

0: तो दीपा जी, आज आपसे ढेर सारे बातें हुई, आपने अपने अनुभव साझा किए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: बहनों, अभी आपने सुना रेडियो के 90 वर्षों के सुनहरे सफर पर विशेष कार्यक्रम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा की ओर। मैंने थोड़ी देर पहले हमने बात की थी शिक्षित और जागरूक महिलाएं कैसे अपना घर संवारती है विषय पर, और ये हो पाता है आत्मविश्वास से। जब आप शिक्षित और जागरूक रहेंगी तो आपके अंदर स्वयं आत्मविश्वास जागेगा। बहनों, आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत होता है। जिसमें आत्मविश्वास होता है वह कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना बड़े ही हिम्मत और समझदारी से कर लेता है। बहनों, कई बार जीवन में असफलता, परेशानी या दूसरों की बातें हमारे मनोबल को कमजोर कर देती है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास रखना ही आत्मविश्वास कहलाता है। बहनों, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी सफलताएं भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बहनों, सबसे बड़ी बात, हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती हम अधिकतर करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान और योग्यता होती है, इसीलिए दूसरों

दूसरों से अपनी तुलना करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। बहनों, हमेशा ये याद रखिए, आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। इसीलिए हमेशा मुस्कुराइए, सकारात्मक रहिए और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। इसी के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इसी के साथ हमारा भी कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर बोलना चाहूंगी कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, ऐसे में किचन में काम करते समय अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहनों, गर्मी के मौसम में किचन में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यह मैं अच्छे से समझती हूँ। तेज गर्मी, गैस की आंच और बंद वातावरण से थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। किचन में काम करते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने को गर्मी से बचा सकती हैं, जैसे कि कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े पहने और बीच बीच में पानी, छाछ या नींबू पानी पीती रहें। किचन की खिड़कियां खुली रखें ताकि हवा आती रहे। ज्यादा गर्मी महसूस हो तो थोड़ी देर आराम भी जरूर करें ताकि थकान महसूस ना हो। और बहनों, गर्मी भी बहुत बढ़ रही है तो कुछ ठंडा खाने का भी मन करता है, तो चलिए मैं आपको एक आइसक्रीम की रेसिपी बताती हूँ। बहनों, सबसे पहले नोट करिए इसकी सामग्री। तो सामग्री में हमको चाहिए 2 कप ठंडा दूध, 1 कप फ्रेश क्रीम, 1/2 कप चीनी, 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट चिप्स, वो आप सब अपने इच्छा अनुसार ले सकती हैं। एक बार फिर से मैं सामग्री आपको बता रही हूँ। 2 कप ठंडा दूध, 1 कप फ्रेश क्रीम, 1/2 कप चीनी, 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट चिप्स आपके इच्छा अनुसार। चलिए अब बनाने की विधि भी जल्दी से जान लेते हैं। एक कटोरी में थोड़ा दूध लेकर उसमें कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह घोल लें। बाकी दूध को गैस पर गर्म करें और उसमें चीनी मिलाएं। अब कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सर डालकर लगातार चलाते रहे ताकि

कि गांठें ना पड़े। मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और ठंडा होने दें। अब इसमें फ्रेश क्रीम और वेनिला एसेंस मिलाएं। चाहे तो ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। मिक्सचर को एयर टाइट डिब्बे में भरकर 6 से 8 घंटे फ्रीजर में जमाएं। स्वादिष्ट होममेड आइसक्रीम तैयार है। तो बहनों, अभी आपको मैंने आइसक्रीम की रेसिपी बनाई, तो अपने परिवार में सबको ज़रूर बना के खिलाइएगा। और गर्मी के मौसम में अपना ध्यान रखे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपनी रेडियो सखी सूर्या को दीजिए अब जाने की अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम, आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। शाम के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से 19वां रोजगार मेला में कई गो सरकारी विभागन आज संगठन में 51,000 से बेसी नया नियुक्त नौजवानन के नियुक्ति पत्र बटलें। मेला के आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ ही देश भर के 47 जगहिन पर कैल गई। ए मौका पर प्रधानमंत्री कहलें कि सरकारी नौकरी लोगन के जिंदगी के बेहतर आसान बनौले के महत्वपूर्ण जरिया है। श्री मोदी कहले कि देश अपने कर्म योगियन पर भरोसा जतौले हवे आ अब इनकर जिम्मेदारी हो कि ओ अपने लगन आचरण और रोजाना के काम से ओ भरोसा के मान रखें और ओके औरियो मजबूत करें। प्रधानमंत्री कहले कि पूरा दुनिया भारत के विकास यात्रा के हिस्सा बने खातिर उत्सुक बा।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री कहलें कि हर भारतीय देश के विकसित भारत बनौले के संकल्प के साथ कार्य कर रहल है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: पूर्वोत्तर रेलवे में नौकरी मिलने पर गोरखपुर के रहवैया आयुष यादव पारदर्शी चयन प्रक्रिया बदे प्रधानमंत्री के धन्यवाद ज्ञापित कैले हवे।
2: मेरा नाम आयुष यादव है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं अन्य रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी प्रक्रिया रही है वो पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके मार्गदर्शन में जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, कुछ योगदान कर सकें, इसके लिए अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे हम।

0: पूरा देश से चुनल गयल नया कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय आ उच्च शिक्षा विभाग जैसन कई गो अलग अलग मंत्रालय आ विभागन में आपन सेवा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज फिर से बढ़ोतरी भइल है। पछिला 10 दिन में तेल के दाम में ई तीसर की बेरी बढ़ोतरी भइल है। प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में करीब 86 पैसा और डीजल करीब 91 पैसा महंगा भइल बा। प्रदेश के महोबा जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज भइल बा। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य नीरज रावत की ओर से शहर के कोतवाली में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह के सतही करीब 3 गो अज्ञात समर्थकन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करावल गयल बा। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स के मुकाबला पंजाब किंग्स से हुई। ई मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में संझा 7:30 बजे से खेला जाये। काल ही राती सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 55 रन से हरौले रहन। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप जारी बा। कई जिलन में तापमान अजुओ 42 डिग्री सेल्सियस से बेसी दर्ज कल गई। मौसम विभाग अगला 3 दिन बदे प्रदेश के पूर्व और पश्चिम इलाकन में दिन में लू चलने के चेतावनी जारी कर ले है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह बतौले कि ये दौरान कई इलाकन में तेज धुरियाल बेरियो चलने के अनिशा बा।
1: प्रदेश में आगामी 1 सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: प्रदेश के बाराबंकी जिला के फतेहपुर थाना इलाका में काल ही देर रात भयल सड़क दुर्घटना में 1 के परिवार के 4 लोगों के मौत हो गई। वहीं 1 जने के हालत गंभीर बा। मौका पर पहुंचल पुलिस घायल लोगों के अस्पताल में भर्ती करौलिस। दुर्घटना ओ समय भयल जब बिजली कटने के नाते 1 के परिवार के सज्जो जने सड़क के किनारे सुतल रहले आ बेकाबू डंपर के चपेटा में आ गए। समाचार पूरा भयल, नमस्कार।

0: सब पंचन के राम राम। नंदू भैया राम राम आपके भी। देखें हम लोगन पंचायती में देखा डुगडुगी बजे लाना, तो ओकरे साथ ही हम लोगन अपने कार्यक्रम में शामिल हो जाए ला जा, और समय से जुट गई जा देखा। और भैया अपन पूरी सुरक्षा के साथ जुट ली है जा हम लोगन।
1: बिल्कुल बिल्कुल बतासा बहन, और जन सुरक्षा के बात है कहलू बतासा बहन, तो ए समय तक सुरक्षा के अपन स्वास्थ्य के बराबर देखभाल एकरा करे के चाहिए, काहे से कि घाम से बचावे के तरीका।
0: बिल्कुल सही बात कहला हा नंदू भैया। और एक घाम में न बचे खातिर ना देखा जरूरत बा भर बांह के कपड़ा लत्ता पहिरल, छाता गमछा साथे रखल, और पानी देखा हम लोगन के सेवन एकर बार बार करल बहुत जरूरी बा। खाना पानी देखा समय समय पे हम लोगन के अपन लेहल जरूरी बा, और जरूरत पड़ला पर ही देखा हम लोगन कोशिश करल जाए घर से बाहर निकल जाए।
1: बिल्कुल बतासा बहन, और घर से बाहर निकले तो भरपेट पानी पी के निकले,
0: बिल्कुल
1: साथ एगो दुगो प्याज ले के निकले,
0: भैया
1: बाकी
0: बिल्कुल हंसत ना।
1: एक लू के असर जोन बा कम बुझाई। आई देखा पुरान अपन जुगत बा, और पुरान जुगत जोन बा आई देखा हंसे के ना भैया, हम ऐसे हंसत है कि भैया देखा देखी में भैया चकाचौंध में जोन बा
0: लोग
1: ई
0: पुरान चीज
1: जुगत
0: भुला
1: के भी
0: जाता
1: जोन बा भुलाइल जात हो।
0: बिल्कुल नंदू भैया। देखा ये समझन प्याज बना नून

0: तुआ के साथे और जो ना आम का पना बा, ये देखा अमृत के समान मजा देला भैया। हाँ मतलब का कहल जाए कि खैला के बाद ना शरीर और मन एकदम शीतलता के अनुभव करेला।
1: काहे नहीं बता सब बहन ने, ई जब आपन पुरातन समय से ई सात्विक आहार समझल जाला और मानल भी जाला।
0: बिल्कुल नंदू भैया, देखा अपन पारंपरिक के हमेशा जीवंत रखल हमन के लक्ष्य होके के चाहिए, चाहे केहू भी कोनो भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग होके, चाहे आदिवासी लोग ही देखा, उनके भी अपने संस्कृति के संजो के रखे के चाहिए और रखत भी हम लोग।
1: बिल्कुल बिल्कुल बता सा बहन, आदिवासी संस्कृति के भी अपन लोक परंपरा, लोक गीत, लोक भजन, सब कुछ अपन महत्व रखेला।
0: बिल्कुल नंदू भैया, देखा आदिवासी जीवन में प्रकृति का महत्वपूर्ण और बहुत गहरा संबंध बा। आदिवासी लोग देखा प्रकृति के प्रति अपन श्रद्धा और आदर भाव के अपना के अपन जो गीत बा उनकर साथ, चाहे उनकर अपन नृत्य बा ओकरे साथ, या फिर ये कहला कि जो रीति रिवाज बा ओके साथ साथ देखा व्यक्त करेला और आनंदित भी होला। प्रत्येक जनजाति के लोग अपन संस्कृति और विरासत का देखा अपन महत्वपूर्ण स्थान बा भैया।
1: बिल्कुल बता सा बहन, आदिवासी संस्कृति और विरासत में लोकगीत चाहे लोक नृत्य में एगो अनूठा एकता दिखाई देला। मानल जाए कि मानर के थाप पर चाहे भैया कर्मा लोकगीत हो चाहे डोमकच हो, बोल हम लोगन भले न समझ पाए, बाकी जब
0: मानर बाजे लाना तो वैसे
1: अपने आप गोड़ थिरके लागेला।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहला नंदू भैया। और देखा लोकगीत के जो विभिन्न परंपरा बा,
1: विभिन्न परंपरा बा और विषय के आधार पर प्रमुख विधा में भी विभाजित कैल गईल बा। जैसे कि बिना मतलब शादी पर गढ़वाल चाहे जला, चाहे संस्कृत गीत चाहे गावल जला, या जन्म के समय पारंपरिक मंगल गीत गावल जला, ये सब ऋतु गीत और त्योहार पर भी कर्मा सरहोल गीत, गोड़ उराव, उमर मुंडा जनजाति लोगन के समझवा माध्यम से गावल जाला।
0: बिल्कुल नंदू भैया, देखा जौन भी गोड़ और उराव और मुंडा जनजाति के लोग हनुमाना, इनके माध्यम से ये सब गीत के गा करके देखा वो आनंदित भी होला और एक सहेजे ले भी और देखा चाहे श्रम चाहे मेहनत करत हुआ या फिर कृषि कार्य करत हुआ, वो समय भी श्रम गीत गावल जाला। और देखे छत्तीसगढ़ी जौन गीत है भैया, वो देखा उनका छत्तीसगढ़ का जो ना प्रमुख जो ना के जनजातीय लोगों का पहचान है।
1: बिल्कुल ददरिया चाहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंचल में भी बहुत प्रसिद्ध एक भी गीत हो, जवन की हर जवान के शैली में प्रेम और
0: सवाल जवाब की शैली में
1: बिल्कुल जानल जाला।
0: बिल्कुल नंदू भैया, देखा कोरकू जो ना आदिवासी समुदाय द्वारा गावल जाला जो की फगनाई मतलब फगुआ के जैसे हम लोगन गाई ले जा, वही तरह से आदिवासी जनजाति के बहुत पारंपरिक गीत और बहुत पसंद कर जला नंदू भाई। और आदिवासी लोग या फिर लोक नृत्य कहला लोक गीत कहला खाली मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये उनकर सांस्कृतिक पहचान और आस्था और इतिहास के सहेज के रखे का एगो सशक्त माध्यम है।
1: बिल्कुल बता सब है ना, आदिवासी लोकगीत पारंपरिक और मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ावे ले, और ये गीत विशेष जनजाति जनजाति लोग अपन संस्कृति जीवन शैली और प्रकृति के सौहार्द में रखे ले।
0: बिल्कुल नंदू भैया, देखा अपन जनबाना की विभिन्न राज्य के कई प्रसिद्ध आदिवासी लोक गीत कला या फिर लोक नृत्य कला प्रचलित है, जैसे कि अपन झारखंड के सरहुल है और देखे अपन मध्य प्रदेश का जो कर्मा है या फिर भगोरिया है, राजस्थान का मेवाड़ के क्षेत्र में जो आदिवासी गीत गावल जाला, यो अपन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेला भैया। कितना गिनावल जाए मतलब जोन भी कुल मिला जुला की कहे के बा कि चाहे आदिवासी लोग हो चाहे हम लोगन स्वयं हो, अपने संस्कृति और परंपरा के जीवंत रखल हम लोगन के हाथ में बा।
1: बिल्कुल बता सा बहन, आप एकदम बात बिल्कुल सही कहले। और देखे आज जानकारी क्रम में भी अपन आदिवासी समाज में अंग चित्रण यानी जोन गोदना जोन एक पहचान रहे कि भैया कुछ तो ऐसा अपन परंपरा रहे। बता सा बहन कि जहाँ भी गोदना एक मानक भी पूरा करत रहे, कई तरह के अपन जाति विभक्त भी करत रहे, श्रृंगार भी करत रहे, तो आज के परंपरा में अब तो देखा पूरा शरीर में भैया का कहले टाइटू कहले कि का कहले वो देखे वो तो अब समझ में
0: भैया देखा वो अपन शौक है और लोग अपन अपने शौक के पूरा कर रहे हैं।
1: हमारे कहे के मतलब ये बता सा बहन की बस जो वो एक अलग पहचान रहे, एकर एक अलग पहचान बा, लेकिन बा दोनों एक के।
0: लेकिन भैया कोनो भी चीज अगर हम लोगन करत ही तो ओके पीछे का रहस्य बा, ओकर का हम लोगन के मान्यता बा। कुल मिला जुला के हम लोगन

विभाजक रेखा है। विंध्याचल के दक्षिणांचल में आदिम काल से गुफा चित्रकला के जनक कुशल शिकारी अग्नि पहियों के आविष्कारक आदिम मानव आदिकाल से निवास करते चले आ रहे हैं। गुफाओं, कंदराओं, जंगलों में निवास करने वाले वनोपजों पर जीवन यापन करने वाले आदिम मानव के वंशधरों को आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, पहाड़ी, जंगली आदि नामों से संबोधित किया जाता है। आदिवासी समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक मान्यताएं, परंपराएं, रूढ़ियां, वाचिक साहित्य, कलाएं मूल रूप से विद्यमान हैं। नारी सौंदर्य चेतना के प्रति क्रियाशील, मन मस्तिष्क, अंतःकरण, अंतः चेतना की जागृति, कलात्मक क्रियाशीलता, रचनाशीलता, कल्पनाशीलता, तकनीकी प्रतिभा, दक्षता, सौंदर्य, भावात्मक शक्ति, वैचारिक विचारों, कलात्मक भावनाओं, विश्वासों को प्राकृतिक गुफाओं, कंदराओं की छतों, दीवारों पर खनिज रंगों से अनुरेखित गुफा चित्रकला की अनुकृतियां कलात्मक यात्रा के माध्यम से नारी के कोमल अंगों पर पीड़ादायक प्रक्रिया खनिज रंगों के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि के लिए अस्थायी रूप से विराजने लगी। आदिवासी समाज में गुफा चित्रों की अनुकृतियों को स्त्री देह पर नुकीले यंत्र खनिज रंगों के माध्यम से अंग आलेखन को गोदना, लीला गोदना, खोदना, खोखड़, गुदना, पछेना की संज्ञा दी गई है। प्रत्येक आदिवासी समाज में नारी देह पर गोदना गुदवाना श्रृंगारात्मक, गीतात्मक, कलात्मक, धार्मिक संस्कार है। स्त्रियां सुवा, सुई, बेर, ओक के कांटों से विभिन्न वनस्पतियों के रंग कालिख मिश्रित रंग के माध्यम से चित्रों का चित्रांकन कराकर कोमल अंगों पर कांटों की चुभन, टीस, असहनीय दर्द सहकर प्राकृतिक प्रेम, धार्मिक आस्था, विश्वास, साहस का परिचय देते हुए लोक संस्कृति की कलात्मक, चित्रात्मक, वर्णात्मक, विवेचात्मक आदि चित्रों को लिलिहरी, गोदनहारी, गोदहारिन, नटैवा, कैलुड़ी लिलिहारिन, गोदनहरी, ओझाइन, नट्टिन, नट, गोण, वादी जाति की लोक कलाकारों से गोदना गुदवाकर अंग चित्रण कला को संरक्षित एवं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती रही हैं। गोदना मानव जीवन की सुखद घटनाओं को, स्मृतियों को शाश्वत बनाए रखने की सुमधुर सरस गीत, नृत्य, संगीतपूर्ण सौंदर्य आकर्षण के लिए मानव अंगों पर लुभावने, आकर्षक, उत्तेजक, बारीक, सघन, प्रतीकात्मक जीवंतता से उकेरी गई अस्थायी आलेखन, अलंकरण, अनुरेखन, आरेखन की अनूठी आदिकालीन परंपरा है। इसके मूल में प्रेम की व्याख्या, अभिव्यक्ति, ईश्वर के प्रति आगात श्रद्धा, विश्वास, सुख, समृद्धि, स्नेह, मर्यादा, प्राकृतिक पारिवारिक प्रेम, व्यक्तिगत जातिगत काबिलाई पहचान, अदृश्य शक्ति, अदम्य साहस, शौर्य का प्रतीक, आत्मविश्वास, आत्मरक्षा, पारलौकिक वैज्ञानिक टोटेमिक कामेक्षा की पूर्ति करने वाला, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, प्रजनन की पूर्ति करने वाला, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक मिथकी कथाओं को उजागर करने वाला, नृत्य संबंधी अवधारणाओं को व्यक्त करने वाला आदिकालीन कला चिन्ह है। गोदना का चित्रांकन कन्या के मासिक धर्म आरंभ होने के पूर्व माथे पर त्रिभुज, युवावस्था में छाती पर मोर, विवाह के पश्चात पांव, घुटनों, गर्भवती स्त्री की जंघा पर, प्रसव के बाद स्तन पर सघन अथवा प्रतीकात्मक चित्रों का चित्रांकन परंपरागत जातिगत आधार पर विभिन्न अवधारणाओं पर आधारित एवं प्रचलित है। बालिकाएं गला, ठुड्डी, माथे पर, किशोरियां बाजू, छाती, कंधे पर, युवतियां पीठ, बांह, जांग, पैरों पर गोदना की विभिन्न सघन आकृतियों के साथ साथ उपास्य देवी देवता, पशु, पक्षी, फूल, पत्ती, ग्रह नक्षत्र, विषैले जीव जंतु, काम प्रतीक चिन्ह, गोत्र चिन्ह का आदिवासी चित्रांकन करा के महिलाओं में लोकप्रिय है। गोदना आदिकाल से स्त्रियों की सौंदर्य वृद्धि का माध्यम रहा है, परंतु हमारे देश में जब विदेशी आक्रांताओं का शासन था उस समय महिलाएं कौमार्य भंग होने के भय से अपने चेहरे को गोदना के माध्यम से कुरूप बनवाने लगी। भारत के तराई क्षेत्र, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तरांचल आदि पहाड़ी क्षेत्रों की स्त्रियां भी दुराचारियों की वासना दृश्य से बचने के लिए गोदना का प्रयोग अपने सुंदर चेहरे को कुरूप बनाने के लिए करती चली आ रही हैं। छुप बहिष्कार के कारण समाज से बहिष्कृत वर्ग राम नामी संप्रदाय का गठन कर लिया। इस संप्रदाय के स्त्री, पुरुष, बच्चे

0: से पूरे शरीर सहित चेहरे, होठ, जिह्वा पर राम नाम का गोदना गुदवा लेते हैं। गोदना चित्रांकन असाधारण दुख भरी चुभन टीशन की प्रक्रिया के बावजूद कलात्मक आस्था विश्वास की डोर में हजारों साल से बांधे रखा है। गोदना गोदने के दर्द को कम करने के लिए गोदहारिन संयोग वियोग के लोकगीत, देवी देवताओं से जुड़ी जातिगत लोक कथाएं सुमधुर कंठ आकर्षक तरीके से सुनाती हैं। पुरुष धागा पुतली के माध्यम से आंगन में बैठी महिलाओं का मनोरंजन करते हैं। गोदना चित्रांकन के पश्चात गोदहारिन पानी और गोबर के से चित्र वाले स्थान को धोकर गर्म तेल और हल्दी का लेप लगाती हैं। गोदना को हरा बनाने के लिए उस पर हरी धूप का रस हल्दी में मिलाकर लगाती हैं। नेग न्यौछावर लेने के बाद मुक्त कंठ से लोकगीत गाती हुई रिमझिम सावन के फुहारों में भीगते हुए गोदहारिन दूसरे द्वार पर पहुंच जाती हैं गोदना गोदने के लिए। गोदना का चित्रांकन विश्व के सभी देशों में कलात्मक लोक आस्था और विश्वास के साथ लोकप्रिय है। भारत सहित पोलिनेशियस, बोनियो के, दयाक, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, अरब, अफगानिस्तान आदि देशों में अंग चित्रण की प्रथा कायम रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 70 किलोमीटर दूर बेग्राम प्राचीन कपिशा से दूसरी शताब्दी का हाथी के दांत पर खुदा सेविका का चित्र प्राप्त हुआ है, जिसके कपोल पर चक्र अंकित है। मिस्र में लगभग 5000 वर्ष पूर्व गोदना चित्रांकन की परंपरा कायम थी। ममी के शोध एवं अध्ययन से ज्ञात हुआ कि स्त्री ममी के पेट, जांघों, बाएं छाती, कंधे पर सरल उभरे हुए अलंकारिक सौंदर्य वृद्धि अनुष्ठानिक चित्र, मंदिर, नर्तक, अंग्रेजी अक्षर का यश, मिस्र की चित्रलिपि, सूक्त वाक्य, देवी देवताओं का नाम, मंत्र, स्त्री पुरुष ममी के बाजू पर शक्ति का प्रतीक जंगली भैंस, भेड़, अन्य ममियों के शरीर पर रेखाएं, बिंदु, मेहराब आदि उभरे हुए गोदना नीला एवं सफेद रंग से गुदा हुआ है। पुराविद ममियों के शोध और अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मिस्र में कुलीन समाज के स्त्री पुरुष गोदना का चित्रांकन एवं एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर कलर थेरेपी के माध्यम से इलाज कराते थे। ब्रिटिश संग्रहालय में गोदना युक्त ममी प्रदर्शित है। ग्रीनलैंड, सलास्का, साइबेरिया, पश्चिम चीन, मिस्र, सूडान, फिलीपींस, पेरू, रूस सहित 49 देशों के 78 पुरातात्विक स्थलों पर गोदना चित्रांकन वाली ममियों पर अनुसंधान जारी है। फिलीपींस की इबलोई कंकेक जातियों में मानव शरीर के गोदना युक्त हिस्से को धीमी आग से संरक्षित करते हैं, जिसे फायर ममी कहा जाता है। गोदना चित्रों को सुरक्षित रखने का आधुनिक तरीका है कि मरे हुए अपने प्रियजनों की याद में उनकी गोदना युक्त त्वचा को फ्रेमिंग कराकर उनकी स्मृतियों को सजोते हैं। गोदना सौंदर्य वृद्धि के साथ साथ एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी के माध्यम से चिकित्सा का सशक्त माध्यम बहुत काल से रहा है। आदिकालीन गोदना आज फैशन का रूप अख्तियार कर चुका है। अब परंपरागत गोदना चित्रांकन के साथ बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों में टैटू पार्लर, मेला तमाशा में इलेक्ट्रॉनिक मशीन टैटू गन के माध्यम से रंगीन गोदना का चित्रांकन का कार्य प्रशिक्षित कलाकार कर रहे हैं। पारंपरिक गोदना के चित्रों के साथ ट्रेडिशनल न्यूयॉर्क स्टाइल, पिनेरिक ट्राइबल्स, सेल्विक कस्टम, ओरिएंटल स्केचर डिजाइन के टैटू के दीवाने बच्चे, बूढ़े और जवान हैं। गोदना चित्र से चित्रांकित स्त्री पुरुष आध्यात्मिक सौंदर्यात्मक चित्रों की अनुकृतियां गुदवा कर यह लोक से परलोक तक की यात्रा तय कर स्वर्ग में भी कलात्मक बोध का अनुभव करते हैं, यही हमारी भारतीय मान्यता है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
5: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
6: हेलो,
4: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
5: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
4: डायल करिए 05445-297-100 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
5: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल।

0: AIR.
1: Only on AIR Obra.
2: बतासा बहन।
3: हाँ रंदू भैया।
2: देखा ये जानकारी रहल आदिवासी समाज में अंग चित्रण गोदना के बारे में जोन दीपक के जरवाने भैया जोन साहित्यकार हुआ बड़ा बढ़िया से अपन एक जानकारी दिल
3: बिल्कुल
2: उनकर भी दिल जाए धन्यवाद
3: झूरे झरना है भैया
2: तो देखा यहाँ सरफी लाल गुर्जर उनके संघाती लोग जोन बा एगो छपरैया सुनाओ थो तो कर
3: सुनल जाए

0: नंदू भैया
1: बता सब है
0: देखा ई रलन हापन सरफीलाल गुर्जर उनके संगति आलोगन छप रही है मनफेर के साथ। और भैया बिल्कुल देखा जौन भी मनफेर होला ना मनफेर का अपन एगो अलग महत्व होला चाहे कोनो भी विधा में होके शादी ब्याह का अगर गीत अगर होला का भी संस्कार गीत में तो देखा समय समय पर शगुन गीत होला चाहे छठी बरही जौन जन्म संस्कार होला भैया तो हर गीत का अपन अलग महत्व।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखा जहाँ तक मन फेर के बात कर लो बता सब एक नामे बा कि भैया मन अगर कैसनो होके ओके तुरंत बदल दे
0: फेर द
1: हाँ बिल्कुल बदल दे फेर दे। आ जहाँ तक अपन विधा के बात बा तो भैया आप जौन विधा में जाल चाहत हूँ वो विधा में चल जाई हैं। लेकिन एक बात हम चला चलाओ ये कह बता सा बहन
0: भैया
1: कि ये समय देखा स्वच्छ जल जौन बा जीवन खातिर बहुत महत्वपूर्ण बा स्वच्छ जल ही अपन सेवन करे के चाहिए।
0: बिल्कुल नंदू भैया देखा अगर अपने शरीर के स्वस्थ रखे के बा मन के बिल्कुल फेरे के बा तो देखा हम लोगन के अपने शरीर में जोन बाकी जल के मात्रा भरपूर रखे के जरूरत बा जोन के कहल जाला हाइड्रेट कइल। तो देखा अगर शरीर में जब शीतलता बनल रही ना तो मन भी शीतल रही और बढ़िया बढ़िया बात निकली और केहू सामने वाला केहू तनी आंख मुनिक से गड़बड़ करी तब वो देख के मने मन प्रसन्न रही तो अगला वाला भी देखा हंसिए दे और खुश रही। तो भैया देखा ये जीवन जोन बा की हंसी खुशी से बीते बस ये कामना बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल आपके कहानी बिल्कुल सही बा।
0: और ये मौसम में तो जानते हो भैया कि सबसे ज्यादा जरूरी बा पानी पानी बा तबे जिनगानी बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल जल जीवन बा तेकर जीवन के अपन सुरक्षित करल जाए और ये मौसम जोन बा ओसे अपन सजगता बनल रहे।
0: बिल्कुल
1: घड़ी के भी इशारा बा कि अब देखा आज के पंचायती समेटल जाए तो फिर अगले पंचायती में बात मुलाकात हो तो सब पंचन के राम राम।

0: हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, एफएम 102.7 पर। लीजिए अब प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: भैया बोला जय जवान जय किसान।
1: बता सा बहन,
2: नंदू भैया
1: देखा आज फिर अपन बसुरी सही समय पर बजल और बैठकी भी लग गई। और बतावा का हाल बा, कहे से कि बता सा बहन, ये समय मौसम में भी काफी बदलाव देखे के मिल रहा बा।
2: बिल्कुल।
1: अब तो नवतपा भी देखा लगे वाला बा, धूप काफी तेज बा। और आज के अधिकतम तापमान देखे 42 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस बा।
2: नंदू भैया बात एकदम तहार सही बा। देखा ऐसा तेज घाम में अपन जो बचवा लोगन हो या फिर बड़ बुजुर्ग और जो अनबोलता जीव जंतु लोगन होवन, जो भी हम लोगन पल्ले पोसले है जा, उनके ध्यान रखना बहुत जरूरी बा। और जब तेज घाम देखा हो जाला ना, तो ऐसे बचे के खातिर हम लोगन के अधिक से अधिक पानी पियल जाए। और पानी जब शरीर में भरपूर रही, नमी बनल रही शरीर में, चाहे अपने अनबोलता जीव में चाहे साग सब्जी में, तो देखा स्वस्थ रही। वही तरीका से हम लोगन आपन बात करल जाए तो ORS का घोल बा, नींबू पानी बा, छाछ मने मंठा बा भैया, और लस्सी का अगर सेवन करल जाए, जो कि आपन देखा इस समय बाजार में खीरा ककड़ी भी बा, ओकर सेवन करल जाए तो निश्चित तौर पे देखा शरीर में पानी के मात्रा बनल
1: बिल्कुल
2: रही।
1: बिल्कुल। और साथ साथ बतासा बहन देखा, पूरा शरीर ढके वाला सूती वस्त्र जोन बा, हल्का रंग के ढीला कपड़ा भी, टोपी गमछा भी लिहल जरूरी बा। काहे से कि देखे दोपहर 12 बजे से हम तक कहब कि भैया अगर कोनो जरूरी ढेर काम न होके तो बाहर न निकलल जाए और ऐसे बचे के चाहिए।
2: भैया नंदू देखा कैसे ना हम लोगन के काम बा, रोज काम बा अपने खेती बारी का, तो देखा हम कहब कि 12 से 4 बजे के बीच में हम लोगन ना काम करल जाए। सवेरे अपने भिनसारे उठ करके सवेरे का काम निपटा लिया जाए, और संझा के जो काम होके वो 5 बजे के बाद ही अपने खेती बारी में देखल जाए। और नंदू भैया के साथ साथ देखा इस समय ना अगर हम लोगों ने कोशिश करती है, बहुत जरूरी बात, घाम में अगर निकल ही के पड़ता है तो कम से कम थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, छायादार पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम करके अपन सुस्ता लिया जाए। और जो भारी मेहनत का काम होला भैया ना, बहुत लगातार न करल जाए, तो देखा ऐसे हम लोगन बचल रह सकीला। चाहे अपन देखा बुजुर्ग लोग हो या फिर बीमार व्यक्ति लोग हो, इनके देखा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखल विशेष ध्यान करे के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखे बचवन के भी पर्याप्त मात्रा में पानी पियावल जाए, काहे से कि देखे बचवा लोगन के पता ना रहला, हल्के रंग के कपड़ा भी उनके पहनावल जाए और धूप से भी उनके बचावल जाए। और बतासा बहन देखें, अपन जोन धूप के या जिके हिस्ट हिस्टो कहल जाला, ओकर अगर लक्षण अगर ऐसा दिखे, जैसे कि मान ला तेज सिर दर्द होके, चक्कर आवे के होके, उल्टी हो, अधिक पसीना आवत होके, या पसीना बंद हो जाए, तेज बुखार होके, या थकान कमजोरी होके, या गर्म शरीर रहे, तो ऐसने में समझ ला कि कहीं ना कहीं आपके डॉक्टर भैया से सलाह जरूर लेवे के चाहिए।
2: बिल्कुल नंदू भैया देखा जैसा

0: आप कहले ना ऐसा लक्षण दिखे तो डॉक्टर से बिल्कुल संपर्क कर जरूरी पड़ जाला। और देखा आपदा के अगर समय भगवान न करे परेशानी क्यों के साथ हो, लेकिन परेशानी बोल के भी नहीं क्यों क्या वाला भैया। तो देखा ऐसे में दे जो सहायता हेल्पलाइन नंबर बा 1077 या फिर जो एम्बुलेंस सेवा बा 108 और पुलिस सहायता नंबर बा 112 पर फोन करके सहायता भी लिया जा सके।
1: बिल्कुल। और बता सा बहन, देखे ये समय अपन खेत में उर्द मूंग आदि फसल भी खेत में बा और इतना धूप में पानी जल्दी जल्दी चाहिए। बाकी रे एक बात कहब कि जल्दी जल्दी पानी देवे के चक्कर में जोन बा ढेर पानी भी खेत में न भरल जाए, न तो समझ ला फसल में फायदा के जगह पर नुकसान हो जाए।
0: बिल्कुल, कहल जाला ना कि अति का भला न बोलना, अति के भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति का भली न
1: धूप
0: धूप। भैया तो देखा कोनो भी चीज का अति ठीक नहीं होला नंदू भैया। और पानी तो जरूरत बा तो, लेकिन समय से पानी देहल जाए और जितना जरूरत हो उतने देहल जाए। अब देखा धीरे धीरे जोन बाकी बुवाई के समय आ रहल बा, ऐसे में देखा अपन बीज एक दिना खातिर गिना है बल्कि अपने पूरे साल के मेहनत और मुनाफा के नींव होला, जरूरत रखे के जरूरत होला। तो देखा अगर नींव ही अगर कमजोर रही तो बताओ इमारत कैसे खड़ा हुई। तो मतलब भैया की बीज जब पोहना रही तो पैदावार कहां से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बात एकदम आपके सही बा बताचा बहन। बीज हमेशा पंजीकृत डीलर या प्रमाणित या लाइसेंस जोन प्राप्त विक्रेता हुआ उनसे ही खरीदे। बीज खरीदते समय जोन बा पक्का बिल या रसीद जरूर ले लें ताकि शिकायत करल जा सके।
0: बिल्कुल नंदू भैया, देखा बीज लेवत के समय ना जोन टैग होला या फिर जोन लेवल पर्ची जोन चपका रहला ओके जांच जरूर कर लेहल जाए। और प्रमाणित बीज पर देखा नीला चाहे सफेद टैग लगल होला जैसे कि बीज का किस्म और अंकुरण प्रतिशत, समाप्ति का तिथि और लाट नंबर भी साफ साफ लिखल रहेला।
1: बिल्कुल, और देखें टैग के पहचान जोन बा प्रजनक बीज के सुनहरा पीला टैग होला, आधार बीज के सफेद होला और जोन बा प्रमाणित बीज जोन होला ओके नीला टैग होला।
0: बिल्कुल नंदू भैया, देखा बातचीत तो होत रही लेकिन अपने किसान वाड़ी बैठकी में हम लोगन और काका शामिल कर ले हैं जा, थोड़ा सा ए पर भी चर्चा हो जाए। देखा आज शनिचर के दिन है तो आ चुकी हेलो किसान के दिन होला, तो भाई आज काका
1: देखा है आज सीधा जोन बा किसान भैया लोगन के जोन बा वो भूमि सुधार और उर्वरा शक्ति के लिए हरी खाद कितना जरूरी बा। सर्वेश कुमार सैनी साहब जोन हो सहायक विकास अधिकारी कृषि दुद्धी से उनसे सीधा अपन बातचीत हुई और किसान भैया लोग सीधा ई बात के सवाल पूछ करके एकर अपन जानकारी प्राप्त करिए। तो हम तो कहब ना
0: हाँ।
1: कि अब हम लोग भी अब देखे चुप रही और सीधा सीधा किसान भैया लोग फोन करत हुआ
0: तो जुड़त हुआ कैसे फोन से के कैसे फोन करत बा और का उनकर समस्या बा जानल सुनल जाए
1: सुनल जाए।
2: किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी में हम लोगन हर समय एक नई तकनीक अपनाई ला कि हम लोगन के उत्पादन अच्छा मिले और जो अपने माटी का उर्वरक क्षमता बा वो भी बना रहे। कहे से कि माटी माई के सुरक्षित रखल बहुत जरूरी है। और देखें आज शनिवार का दिन है और आज हम लोगन अपने किसान वाणी कार्यक्रम में लेकर आईला हेलो किसान। तो देखें आज हमारे साथे स्टूडियो में आमंत्रित हुआ सर्वेश कुमार सैनी साहब जौन की सहायक विकास अधिकारी कृषि दुद्धी में हुआ आप और आज आपसे ही हम लोगन जानब की हरी खाद का उन्नत तकनीक का बा और हरी खाद के अपनाए का जौन रासायनिक उर्वरक बा ओके कैसे हम लोगन कम कर सकीला और अपने माटी का जौन उर्वरा शक्ति बा ओके कैसे बढ़ाए सकीला जा। सर्वेश कुमार सैनी साहब नमस्कार।
3: नमस्कार
2: सैनी साहब, अपन किसान भाई लोग धीरे धीरे अब खरीफ का तैयारी की तरफ बढ़त हो कैसे कि जेठ का महीना लगभग आधा एक तरह से देखल जाए तो बीत चलल है और जौन किसान भाई लोग हम एकदम तैयारी में लग गल हुआ कहे से कि एक मास ऋतु आगे धावे आधा जेठ अषाढ़ कहावे। तो जब किसान भाई लोग तैयारी में हम अपने माटी का उर्वरक क्षमता बढ़ावे बदे अपन किसान भाई लोग का कह सकन अपने खेत में।
3: किसान भाई देखिए आज के समय में सबसे ज्यादा अगर खेती में अगर किसी चीज का नुकसान हुआ है तो हमारी मिट्टी का।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक खादों और कीटनाशकों का जो अंधाधुंध प्रयोग किए हैं इससे हमारी मिट्टी खराब हो गई है।
2: बिल्कुल,
3: और मिट्टी को हम स्वस्थ कैसे बनाएं, क्योंकि स्वस्थ मिट्टी से ही हम अच्छा अन्न उत्पादन कर सकते हैं। कहते हैं कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा।
2: बिल्कुल,
3: और धरती माँ के समान है तो इस माँ को हमें कैसे बचाना है इसके लिए सबसे अच्छी एक विधा है कि हम अपने खरीफ के मौसम में अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग करें।

0: हरी खाद का प्रयोग की बात अगर करें तो मुख्यतः तीन फसलें ऐसी हैं जिनका हम हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पहली है ढैंचा, दूसरा है सनई और तीसरी फसल है मूंग। तो मूंग तो किसान बहुत कम करते हैं, लेकिन सनई और ढैंचा को हम हरी खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और किसान भाई देखिए, इसका जो मुख्य लाभ होता है कि हम अपनी मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाएं, क्योंकि हमारे मिट्टी में करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया हैं जो उसमें जो भी हमारे तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनको पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। यानी कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है मिट्टी में हरी खाद के प्रयोग से बढ़ती है। इसके अलावा देखिए, अगर आप गोबर की भी खाद का प्रयोग करते हैं तो भी मिट्टी के कार्बनिक जो मात्रा है जीवांश कार्बन की, वो बढ़ती है। लेकिन आज के समय में गोवंशों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में किसान भाई उस मात्रा में गोबर की खाद खेत में नहीं डाल पा रहे हैं, तो इसका एक सबसे सस्ता और अच्छा विकल्प है कि वह हरी खाद का प्रयोग करें।
1: बिल्कुल। अच्छा सर्वेश कुमार सैनी साहब, जौन अपन किसान भाई लोग हरी खाद का खेती कैल चाहता, जैसे मान लें सनई बा या ढैचा बा, ओके अपनावल चाहता, खास तौर से ढैचा का खेती अपने अंचल में अपन किसान भाई लोग अधिक कैल चाहना, माने ऊपर अगर रावर्सगंज ब्लॉक घोरावल या चतरा नगवा में, नीचे अक्सर देखल जाला कि सनई का भी खेती अपन किसान भैया लोग करन, तो एकर उचित बुवाई का समय का है?
0: देखो किसान भाई, हरी खाद का प्रयोग जो करने का सबसे अच्छा समय है, हम एक समय बनाते हैं कि हम कब धान की रुपाई करें।
1: जी जी।
0: क्योंकि हरी खाद बोने के लगभग 40 से 45 दिन बाद उसकी पलटाई करना बहुत जरूरी होता है। और एक अवस्था भी होती है हरी खाद की, अगर आप जैसे ढैंचा बोए हैं, जैसे उसमें फूल आने का आप देखें कि फूल अब आना आ रहा है, उस समय उसकी पलटाई अनिवार्य रूप से कर दें, अन्यथा जो लाभ हमको उसके प्रयोग से मिलना है वो नहीं मिल पाएगा।
1: जी जी।
0: तो एक टप्पर भी मैं एक आपको जनरली सामान्यतः जो किसान भाई प्रयोग करते हैं, वर्तमान में उसकी बुआई का समय जो है प्रारंभ हो चुका है।
1: जी जी।
0: किसान भाई अभी से लेके 15 मई से लेके 15 जून तक बड़े आराम से, लेकिन एक चीज का ये ध्यान रखेंगे कि बुआई के धान की रोपाई के 45 दिन पहले फसल की पलटाई हो जानी चाहिए, तभी उसका हमको अधिक से अधिक लाभ मिल पाएगा। क्योंकि वो जब खेत में अच्छे से सड़ेगा तभी खेत में जो है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी।
1: अच्छा सर्वेश कुमार सैनी साहब, एक चीज और हम आपसे जानल चाहब कि सनई और ढैचा का बीज अपने किसान भाई लोगन के नहीं उपलब्ध हो पावे, तो इनमें भी कोनो प्रजात होनी कि एक प्रजात का सनई और ढैचा का बीज होला है, और कैसे ये उपलब्ध हो सकला?
0: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। बहुत बार किसान यह पूछते हैं कि हरी खाद का प्रयोग वो करना चाहते हैं, लेकिन उसका बीज उनको कहाँ से मिले।
1: जी।
0: तो किसान भाई, इसमें जनपद के सभी विकास खंडों पे ढैंचे का बीज उपलब्ध है।
1: जी।
0: किसान भाई, कृषि विभाग के का जो पोर्टल है agridarshan.gov.in, उस पोर्टल पे जाके अपने बीज की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के उपरांत अपना आधार और खतौनी मोबाइल नंबर ले जाकर राजकीय कृषि बीज भंडार पर POS मशीन के माध्यम से @source DBT के व्यवस्था के तहत उनको बीज मिल जाएगा। यानी बीज का जो मूल्य होगा सब्सिडी काट कर वही किसान को वहां पर देना होगा।
1: अच्छा, अगर किसान भाई लोग डायरेक्ट ले जाता है, बुकिंग नहीं करावत तब?
0: किसान भाई देखिए, इस बार से नई व्यवस्था की गई है कि किसानों को, जो किसान पहले बुक किए हैं, पहले प्राथमिकता हम उनको देंगे, उसके बाद अगर बीज हमारे पास अवशेष है तो शेष किसानों को हम लाभान्वित करेंगे। आप अपने नजदीकी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर संपर्क कर लें और विभाग से जुड़कर अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लेते रहें, क्योंकि अभी ये खरीफ का मौसम चल रहा है। तो अभी ढैंचे की बात है, अभी धान आएगा, खरीफ के मौसम के जो तमाम बीज हैं, अरहर है, उर्द है, तिल है, मूंगफली है, इसके अलावा जो हमारे श्री अन्न के बीज हैं, सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा, इस तरह के जो बीज हैं ये भी हमारे यहाँ, इसके अलावा तिलहन में मूंगफली का भी इस बार बीज हमारे यहाँ राजकीय कृषि भंडारों पर उपलब्ध रहेगा। तो किसान भाई, कृषि विभाग से जुड़कर अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लें, साथ ही साथ बीज, इसके अलावा कृषि यंत्रों का भी लाभ लें, और वर्तमान में ढैंचे का बीज सभी स्टोरों पर उपलब्ध है, और वहाँ अपने नजदीकी राजकीय कृषि बीज भंडार जाकर
1: ढैंचे का बीज प्राप्त करें। हेलो,
2: जी
1: हाँ भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। अपन नाम बतावा, कहाँ से बोलत हूँ भैया?
2: बाबूलाल मौर्य, ग्राम मानपुर से भैया बोलत हैं।
1: बाबूलाल भैया, आज देखा हम लोग बातचीत करत है हरी खाद का उन्नत तकनीक के बारे में। सर्वेश कुमार सैनी साहब हम लोग के साथ हुआ, सहायक विकास अधिकारी कृषि दुद्धी। आप इनसे अपन प्रश्न कराएं सैनी साहब से।
2: जी
0: हाँ बोले
2: सैनी साहब, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, बताएं मोरे जी।
2: जैसे अब इसमें कुछ जायद वाली फसल भी लगल बान खेतर में, जैसे कोहरा लौकी नेनुआ, ये सब भी जैसे बना लेवल जला खाद हरी खाद के रूप में, लेकिन एकरे बाद भी और कौन चीज अपनावल जाए जैसे कि हरी खाद हमन के तैयार हो जाए?
0: देखिए बहुत अच्छा मौर्या जी आपने प्रश्न किया। हम खेतों में अधिक से अधिक वनस्पतियों को सड़ाएं ताकि हमारे खेत में जो कार्बनिक खाद है उसकी मात्रा बढ़ी रहे, ताकि हमको रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर न रहना पड़े ज्यादा। ऐसे में देखिए हमारे यहाँ राजकीय कृषि बीज भंडारों पर ढैचा का बीज इस समय उपलब्ध हो गया है। आप कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग के माध्यम से नजदीकी कृषि बीज भंडारों से ढैचे का बीज प्राप्त कर सकते हैं, और इस समय बुआई का बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो अभी आप बीज प्राप्त करके बुआई कर दें। बुआई के लगभग 40 से 45 दिन बाद फसल लगभग आपकी 1.5 मीटर की हाइट तक आ जाएगी। उस स्थिति में आप उसकी पलटाई जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब हरी खाद में क्या है कि जब पौधा पुराना हो जाता है उसमें डंठल पड़ जाता है, तो पता चला कि उसको फिर सड़ने में काफी समय लगता है, और खेत की मिट्टी पर जितना इसको प्रभाव होना चाहिए उतना प्रभाव नहीं दे पाता। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि बुआई के 45 दिन के भीतर ही इसकी पलटाई अनिवार्य रूप से कर दीजिएगा।
2: सनई का भी कुछ लोग नाम लेवलन, सनई का भी चर्चा होला हरी खाद के रूप में, तो वो कैसे का होकर होला?
0: सनई भी देखिए हरी खाद के लिए बहुत अच्छी फसल है, लेकिन वर्तमान में हमारे राजकीय कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध नहीं है। आप नजदीकी किसी विश्वसनीय दुकान से या अपने नजदीकी कोई विश्वसनीय बाजार हो वहाँ से सनई का बीज प्राप्त कर सकते हैं।
2: जी। एकर बीज का मात्रा कैसे, एकर कितना बीघा बोने की चाहिए?
0: ढैचे का बीज जो है वो 10 से 12 किलो प्रति बीघे की दर से आपको बुआई करना है।
2: अच्छा, 10 से 12 किलो बीघा।
0: हाँ, प्रति बीघा। और
2: सनई?
0: सनई लगभग लगभग 15 से 20 किलो प्रति बीघे के दर से।
2: अच्छा, तो ये भी 45 दिन पर पलटाई होगी चाहिए सनई भी?
0: जी जी जी, मुख्य चीज ये रहता है कि हमारे जो तना है उसमें डंठल नहीं आना चाहिए, क्योंकि लकड़ी हाँ मुलायम रहेगा तभी खेत में अच्छे से सड़ेगा और खेत में जीवांश पदार्थों की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ इसमें देखिए बहुत सारे ह्यूमिक एसिड वगैरह होते हैं, जैसे कि आप लोग सब्जियों खेती करते हैं तो आप बाजार से ह्यूमिक एसिड भी खरीद के सब्जियों में डालते हैं, तो अगर आप हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो आपको प्राकृतिक रूप से खेत में ह्यूमिक एसिड, इसके अलावा 17 तरह के ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपके खेत को मिल जाते हैं। बात करें तो 1 हेक्टेयर अगर आप ढैचा लगाते हैं तो लगभग लगभग 80 से 100 kg नाइट्रोजन आपके खेत में प्राकृतिक रूप से मिल जाता है, और यह निरंतर एक फसल से दूसरे फसल तक ये मिलता रहता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप ढैचे का जो है इस बार जो है कि प्रयोग हरी खाद के रूप में जरूर करें।
1: बाबूलाल भैया, आज आप अपने हेलो किसान कार्यक्रम में फोन कैलन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ देखें सनी साहब, एक फोन आई गलबा। हाँ भैया, आप कहाँ से बोलत हो, अपन नाम बतावा?
3: मोहन सिंह बोल रहा
1: हूँ। मोहन सिंह भैया, आपका अपने हेलो किसान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। देखें आज हम लोगन के बीच में सहायक विकास अधिकारी कृषि दुद्धी सर्वेश कुमार सैनी साहब हवा, हरी खाद के उन्नत तकनीक पर बातचीत होता, तो आप इनसे अपन प्रश्न करें सैनी साहब से।
3: जी सर, राम राम। जो खरीफ की फसल की बुआई के पूर्व जो खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए जैसे सनई या ढैचा का हम बुआई करते हैं, जिसका
0: जी
3: सही समय क्या है बुआई करने का?
0: देखिए इस समय बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। अगर आपके पास नमी अगर खेतों में है, अगर पानी की व्यवस्था है, तो सिंचाई करके ढैचे का बीज आप इस समय हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ढैचे का बीज आपको आपके नजदीकी राजकीय कृषि बीज भंडारों पर आसानी से मिल जाएगा, और जब भी आप राजकीय कृषि बीज भंडार पर जाइएगा अपना आधार, खतौनी, मोबाइल नंबर और 77 रुपए 50 पैसे की दर से यह बीज उपलब्ध है। आप एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक यानी 80 किलो तक बीज आपको मिल जाएगा। तो आपको बीज लेना है तो नजदीकी

0: अपने राजकीय कृषि भंडार जाकर बीज प्राप्त कर सकते हैं।
1: एक हेक्टेयर में 40 किलो बीज लगते हैं।
0: जी जी
1: तो इसका जैसे अभी हम बुआई कर देते हैं तो मतलब कितने दिन में इसको हम खेत में वो रोटावेटर करेंगे?
0: लगभग लगभग 40 से 45 दिन की जब अवस्था हो जाए, 40 से 45 दिन में लगभग लगभग पौधा जो है 1 से 1.5 मीटर की हाइट तक आ जाता है। ऐसी स्थिति में आप जो है उसकी पलटाई कर दीजिए।
1: जैसे अभी तो मौसम थोड़ा बारिश नहीं हो रही तो बीच में सिंचाई भी करना होगा?
0: नहीं, सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बस एक बार उसका बीज जम जाए, बीज जमते समय नमी आवश्यक है, उसके बाद उसको बहुत पानी की आवश्यकता नहीं होती, मौसम के अनुसार ही। अभी देख 15 दिन बाद मौसम ठंडा भी हो जाएगा, तो जैसे ही बारिश होती है बहुत तेजी से इसकी वृद्धि होती है, तो पानी की आवश्यकता इसको ना के बराबर है, बस प्रथम बार इसको बुआई के समय नमी होना चाहिए खेत में।
2: मोहन सिंह भैया, आज अपने हेलो किसान कार्यक्रम में आप फोन कर लेने एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी साहब, एक प्रश्न और हरी खाद से ही जुड़ल बा हमार, चूंकि जैसे जहाँ किसान भाई लोगन के पानी नहीं मिल पावे, सबसे बड़ी बात उनकर होले शिकायत होले कि हम लोगन के हैं पानी का सुविधा उतना नहीं बा, ऐसे हम लोगन सनई और ढैचा सड़ाई नहीं पाई, तो ओकरे बदे कोनो दूसर तरीका भी अपना सकना?
0: देखिए किसान भाई, जैसा कि आपने पूछा कि जहाँ पानी का अभाव है, जैसे बुआई करते समय किसान मान लीजिए अभी असमय वर्षा हो गई तो नमी है तो किसान इस समय ढैचे की बुआई कर दी, लेकिन हो सकता है कि जब फसल 40 से 45 दिन की हो उस समय बारिश न हो तो उसको, क्योंकि जब तक वो मिट्टी में अच्छे से मिलेगा नहीं, वो पानी में सड़ेगा नहीं, तब तक खाद जो है अच्छे से बनेगा नहीं।
2: जी जी।
0: तो ऐसी स्थिति में देखिए किसान भाई, इस समय बहुत अच्छे अच्छे यंत्र हमारे यहाँ जो है कि मार्केट में उपलब्ध हो गए हैं, ऐसे में एक यंत्र है रोटावेटर।
2: जी जी।
0: अगर किसान भाई को लगता है कि नहीं बारिश में थोड़ा विलंब है, तो ऐसी स्थिति में जब फसल 45 दिन की लगभग लगभग हो जाए, उस अवस्था में रोटावेटर के माध्यम से उसकी जुताई कर दें, तो वो एक तो मिट्टी में अच्छे से मिल जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, उसके बाद अगर जब जैसे ही बारिश हुई वो फिर सड़ने की प्रक्रिया उनकी प्रारंभ हो जाएगी।
2: अच्छा
0: जी,
2: चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के आज हेलो किसान के माध्यम से का सहेजल चाहिए, उनसे का कर चाहिए?
0: किसान भाई देखिए, अब खरीफ का समय आ गया है और ऐसे में किसान भाई बीजों को लेके लिए बड़े असमंजस की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि राजकीय कृषि बीज भंडारों पर तो बीज उपलब्ध रहता ही है, इसके अलावा बहुत सारे किसान जो निजी दुकानदार हैं, प्राइवेट दुकानदार हैं, उनके पास भी बीज लेने के लिए जाते हैं। तो किसान भाई से निवेदन यह है कि आप जो है जब भी किसी प्राइवेट दुकानदार से बीज लें, उससे उसकी पक्की रसीद अवश्य लें, क्योंकि बहुत सारे इस मौसम में गलत बीजों का जो है वितरण भी ज्यादा बढ़ जाता है, दुकानदार मुनाफाखोरी के चक्कर में नकली बीज भी किसानों को दे देते हैं, क्योंकि साल भर की फसल है, तो इसलिए किसान भाई जो है कि जिस भी दुकानदार से, पहली बात तो बीज किसी विश्वसनीय दुकानदार से लें, और जिससे भी बीज लें उससे बिल की प्रति अवश्य मांगे। अगर कोई किसान, कोई दुकानदार बिल देने से मना करता है, तो आप अपने नजदीकी विकास खंड के एडीओ एजी के पास शिकायत कर सकते हैं, जिला स्तर पे अगर आप हैं तो जिला कृषि अधिकारी के पास इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसान भाई देखिए, इस समय उर्वरक की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि अपनी फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से करा लें और आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक खरीदें और खेत में प्रयोग करें, अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग न करें, क्योंकि अंधाधुंध उर्वरक का आप प्रयोग करते हैं तो एक तो मिट्टी खराब होती है, साथ ही साथ वो हानिकारक तत्व अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में भी पहुंच रहा है और उससे बहुत सारी भयंकर भयंकर बीमारियां हो रही हैं। तो किसान भाई से निवेदन है कि आप जो है संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करें, कोशिश करें कि हम जैविक की तरफ जाएं, जैविक खादों का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें, अति आवश्यक है तो हम रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है वो संतुलित मात्रा में ही करें।
2: बिल्कुल सर्वेश कुमार सैनी साहब, आज अपने हेलो किसान कार्यक्रम में है ना और अपने किसान भाई लोगन के इतना बढ़िया जानकारी दिलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का

0: न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
1: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: बता सब बहन, देखा ये रहल सीधा किसान भैया लोगन के संपर्क, जोन बा सर्वेश कुमार सैनी भैया से
6: संदेश से पहले जोन जानकारी लेते
5: लिया। बिल्कुल बिल्कुल, जोन भूमि सुधार और उर्वरा शक्ति के लिए हरी खाद कैसे कितना कारगर बा।
6: हेलो किसान वाड़ी के फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से
5: ये जानल गयी।
6: बिल्कुल,
5: और देखा अब हमारे हाथ में बाजार भाव भी लग गई बा, मधुपुर के पूर्णवासी चौहान भैया।
6: बिल्कुल भैया, देखा अगर हम लोगन के पैदावार उत्पादन बढ़िया हो रहा बा साग सब्जी के, तो हम लोगन बाजार भाव निश्चित तौर पे भेजल जाला, तो जहाँ बढ़िया भाव मिलेला वही लोगों ले जाए के प्रयास करेगा।
5: बिल्कुल, तो देखा मधुपुर के बा कुंतल में बा,
6: हाँ।
5: पकल पपीता देखे 1600 रुपया, कच्चा आम 2000, तरबूज 800, कोहरी 200 और बोड़ा 500, आलू लाल वाला 1000 और सफेद वाला 800, टमाटर 800, प्याज 1300, लहसुन रहल 8000, मूली 1000, गाजर 1200, खीरा 1300, ककड़ी 1000, खरबूजा 1400, लौकी रहल 800, करेला 1500, भिंडी 500, नेनुआ 500, चौराई 1000 रहल, परवल 6500 रहल, बैगन लंबा वाला 1200, गोल वाला 2500, कुंदरू रहल 2500, कटहल 1200, चुकंदर 1500, धनिया 4000, मिर्चा रहल 4500, अदरक रहल 8000, सूरन 4000, और फूल गोभी रहल इस एकड़ा में 1500 रुपया, और पत्ता रहल 1800, और चल चलावत नींबू रहल 400 रुपया सैकड़ा।
6: भैया चल चलावत तो देखा मन फेर के साथ अपन बैठ की समेटल जाये, लेकिन अब तक आपकी धन्यवाद स्वरूप सरफी लाल गुर्जर के संगतिया लोगों का गावल एगो किसानी
5: तो सुनल जाए।

0: बता सा बहन।
1: हाँ नंदू भैया
0: देखा सर फिर लाल गुर्जर भैया कितना बढ़िया अपन मन फेर भी चल रहा बा, लेकिन चला चलावा तो हम ये कहम कि देखे जमाना बागेल बा कि घुलनशील जौन उर्वरक बा ओकर प्रयोग करल जाए
1: बिल्कुल।

0: करल जाए, काहे से कि देखें जौन भी यूरिया डीएपी बा उसे काफी अपन
1: फायदा बा। बिल्कुल, तो फायदा ही हम लोगों के सोचे के बाद अगली बैठकी में फिर नई जानकारी के साथ मुलाकात करल जाए तो चल जाए।
0: तो भैया बोला जय जवान जय किसान।

हम आकाशवाणी उभरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज में मेहंदी रंग लाएगी फिल्म से, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बालन सुब्रमण्यम की आवाज में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा से।

तो इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, समय है सूचना और कार्यक्रम विवरण का। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28 जनवरी 2026 को एक अज्ञात पुरुष का शव एमजीआर रेलवे लाइन न्यू सीएचपी मधुकान कंपनी के पास, जो बीना शक्तिनगर के अंतर्गत आता है, सुबह 8:15 पर मिला। होलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 26 वर्ष, लंबाई 172 सेंटीमीटर, रंग सामान्य था। एक और अज्ञात महिला का शव 2 मार्च 2026 को ग्राम धनौरा सोनभद्र जंगल में सुबह 8:40 के करीब मिला। हुलिया इस प्रकार था। उम्र लगभग 35 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग सांवला था। जिस किसी को भी इसके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो, कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करने का कष्ट करें। सूचना समाप्त हुई। और अब कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हम आपको याद दिला दें, राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती का समय रहेगा रात्रि 9:30 का, और रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। यादों के झरोकों से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। 7:31 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस, और 7:45 का समय रहेगा कार्यक्रम वट वृक्ष का। इसके अंतर्गत आज आपको हम सुनवाएंगे जीवन के अनुभव क्रम में ब्रिज मोहन प्रसाद से की गई बातचीत। सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 पर, और 8:15 का समय फिल्म संगीत कार्यक्रम का रहेगा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण आकाशवाणी के, हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपसे बस थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं

0: उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। यह रोजगार मेला राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा सहित पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
0: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है। आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
3: मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में

0: नित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
2: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नए प्रयोग योजना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं।
0: अयोध्या में आज तेज आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव से इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
3: इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा।
0: आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई।

रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित, बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

हम आकाशवाणी उबरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। सबसे पहला गीत आशा भोसले की आवाज में फिल्म एहसास से। चौदह इंदीवर के लिखे इस गाने की धुन बप्पी लहरी ने बनाई है।

श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा उससे पहले आइए आपको एक सूचना देते हैं। हीट वेव के संदर्भ में, हीट वेव के समय शरीर को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। हमें दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बाहर निकलते समय सिर को ढक के रखें। धूप में अधिक देर रहने से चक्कर, कमजोरी और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए गर्मी के मौसम में सावधानी बरतना आवश्यक है।

0: आशा भोसले की आवाज में श्रोताओं आप सुन रहे थे ये नजदीकियां फिल्म के इस गाने को। गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा। यह है सबरस कार्यक्रम का आखिरी गीत। श्रोताओं, कलाकार फिल्म का यह गीत है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाटकर की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कलाकार फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और किशोर कुमार की आवाजों में। इसी के साथ हमारा आज का सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम वटवृक्ष।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, वटवृक्ष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वटवृक्ष कार्यक्रम में जीवन के अनुभव क्रम में आपको सुनवा रहे हैं ब्रिज मोहन प्रसाद से आशीष वर्मा की ये बातचीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं वट वृक्ष कार्यक्रम। आपके साथ मैं आशीष वर्मा। श्रोताओं, वट वृक्ष यानी एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उसकी छाया उतनी ही विस्तृत और सुकून देने वाली होती हैं। हमारे समाज में भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनका अनुभव, संघर्ष और जीवन जीने की सीख हमें सही राह दिखाती है। आज हम ऐसे ही व्यक्तित्व से बातचीत करने जा रहे हैं जिनका जीवन रेलवे जैसी जिम्मेदार सेवा में बीता है, जिन्होंने अपने अनुभवों से न जाने कितने लोगों को भी प्रभावित किया है। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य रेल नियंत्रक चोपन भारतीय रेलवे से सेवानिवृत्त श्री ब्रिज मोहन प्रसाद जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा, यानी कि आपका बचपन कैसा रहा, किन परिस्थितियों में आपने अपनी पढ़ाई लिखाई का जो ये सफर था उसको मेंटेन किया, बनाए रखा? क्या उस समय आपने कभी ये सोचा था कि आप इतने जिम्मेदारी वाले पद तक पहुंचेंगे?
1: शुरू में तो हम लोग अपने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई शुरू किया अपने गाँव में ही
0: जी,
1: लेकिन गाँव से जैसे ही पांच क्लास पास किए तो छठा क्लास में जाकर के हाई स्कूल में दूसरे जगह नाम लिखाना पड़ा, जो कि हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी थी। और वो रास्ता पूरा हम लोग पैदल जाते थे। हमारे गांव से कम 80 से 90 स्टूडेंट थे जो हम लोग डेली जाते आते। मैट्रिक पास करने के बाद फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ तो हम जाकर के बाहर चले गए और वहां जाकर के 3-4 साल जो भी था अपना शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद रेलवे का, मुख्यतः रेलवे का ही हम 4-5-6 का इम्तहान दिए थे, जिसमें एक में मेरा सिलेक्शन हो गया था। हमारी शुरुआत में पोस्टिंग असिस्टेंट स्टेशन मास्टर।
0: अच्छा, कहाँ पे?
1: धनबाद डिवीजन में।
0: अच्छा अच्छा।
1: ट्रेनिंग हुआ धनबाद से, जोनल ट्रेनिंग स्कूल धनबाद से, और उसके बाद 7.5 महीने का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद परीक्षा हुई। परीक्षा में जब हम सफल हुए तो फिर हमारी पोस्टिंग दे दी गई डिपार्टमेंट से, नियर डाल्टनगंज।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी।
1: और वहाँ मैं 5 साल रहा। उसके बाद बच्चे की शिक्षा उक्षा को लेकर के फिर हमको आना पड़ा, तो फिलहाल मैं ओबरा में आकर के अपने बच्चों की शिक्षा का ध्यान में रखते हुए यहीं पर अपना अगली शुरुआत की नौकरी।
0: बिल्कुल। और जब आप रेलवे सेवा में आए तो शुरुआती दिनों का जो आपका अनुभव था वो कैसा रहा, यानी किस तरह की शुरुआत आपकी हुई? नई नई जिम्मेदारियां रही होंगी, नया नया माहौल रहा होगा, क्या कोई ऐसी बात या घटना जिसने आपको इस नौकरी के प्रति और अधिक समर्पित बना दिया हो, अगर कुछ याद आ रहा हो तो?
1: उसमें तो सर ऐसा था कि स्टेशन मास्टर की नौकरी में सामने से गाड़ी जा रही होती है तो मुख्य उसका काम होता है देखना
0: जी
1: कि गाड़ी सही पोजीशन में जा रही है कि नहीं, कोई इसमें गड़बड़ी तो नहीं नजर आ रही है। अगर गड़बड़ी आई तो लाल झंडी दे करके गार्ड के थ्रू हम लोग गाड़ी रुकवा देते थे। तो ऐसा कभी कभी हो ही जाता था, गड़बड़ी तो नजर आ

0: आना ही था।
1: ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी लगती थी आपको?
0: जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी थी, अगर आप ओवरलुक कर गए, आगे जाकर के गाड़ी अगर गिर गई तो फिर आप फंसेंगे इंक्वायरी में। तो ये जिम्मेदारी तो थी, जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने आप को पूरा केंद्रित रखना पड़ता था
1: जी,
0: कि हमारे कोई भी दृष्टि से गलत चीज न जाने पाए।
1: बिल्कुल, माहौल भी बदल गया और जिम्मेदारी तो वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि कोई चूक न होने पाए, नहीं तो नौकरी पे भी बात आएगी।
0: सेफ्टी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता।
1: अच्छा, सेफ्टी पे क्या, किस तरीके से ध्यान देता था?
0: सेफ्टी पर मतलब ये कि कोई गाड़ी ऐसे जगह न जाए जहां उसको जाने का रास्ता नहीं है, जिसको ब्लॉक लाइन बोलते हैं। पहले आपको देख लेना है कि जो भी आप सिग्नल देने जा रहे हैं वो एक साफ सुथरे लाइन पर आनी चाहिए, बाधा रहित।
1: ये किस समय की बात बता रहे हैं आप?
0: ये आपको 76 जनवरी से हम ओपन लाइन में
1: ज्वाइन किए थे,
0: इंडिपेंडेंट मतलब ड्यूटी में हम आ गए।
1: बिल्कुल सर। तो अच्छा, अब तो खैर टेक्निक बहुत ज्यादा बदल गई है, तकनीकी सुविधाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। जब आपने शुरुआत की थी तो उस समय शायद साधन बहुत सीमित रहे होंगे, और जैसा कि आपने सुरक्षा की बात की कि देखना कि सही ट्रैक पे ट्रेन जा रही है कि नहीं जा रही है, कहीं कोई ब्लॉक तो नहीं है
0: जी, जी।
1: तो जो अब तकनीकें बदल गई हैं, कितना आसान हो गया है ये काम?
0: आसान तो अभी बहुत हो गया है। पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन टोटली आपके व्यक्तिगत निर्णय पर ये होता था कि गाड़ी को कहाँ लेना है। अभी मशीनरी चेक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कोई भी फॉल्ट लाइन पर जहाँ गाड़ी पहले से खड़ी है वहाँ चाह करके भी कोई गाड़ी को एडमिट नहीं कर सकते हैं, मतलब आप सिग्नल नहीं होगा वहाँ। लेकिन फिर भी कभी कभी फेल्योर हो जाता है जिसके परिणाम बड़ा भयावह
1: होता है। बिल्कुल। तो जो आपने मैन्युअली चेक करने की बात की सर, इंडिविजुअल एक डिसीजन लेने की बात कही व्यक्तिगत तौर पे, तो ये किस तरीके से आप लोग लेते थे?
0: जैसे गाड़ी आ गई तो आ जाने से नहीं ना होगा, आई तो चली जा रही है आगे, उसका एक सर्टेन पॉइंट होता है कि यहाँ तक लाइन आपका सफा है तो आप दूसरी गाड़ी को पिछले स्टेशन से आने की अनुमति दे सकते हैं, तभी उतरी जाती थी। और आजकल तो सब मशीनरी चेक हो गया है, एकदम टोटल इंटरलॉकिंग ऐसा बना दिया है सरकार ने, और
1: घटनाओं की दुर्घटनाओं की जो
0: संभावना बहुत ही कम
1: हो गई है। बिल्कुल,
0: टोटली आपको आदमी को रिलैक्स किए हुए है।
1: अच्छा, आपका पद जैसा कि आपकी बातों से भी लग रहा है और जहां तक हम महसूस कर पा रहे हैं कि काफी जिम्मेदारी भरा रहा, दिन रात की ड्यूटी, तनाव और त्वरित निर्णय लेने की जो आपने बात कही, ऐसे में आप संतुलन कैसे बना के रखते थे? क्या ऐसा कोई खास तरीका था जिससे आप अपने दबाव को सही कर पाते थे या सही निर्णय ले पाते थे?
0: उसमें देखिए सर, जब आप काम के अंदर अपने आप को डुबो देंगे तो आप उसके प्रति इतने समर्पित हो जाएंगे कि उसके प्रति जो भी अच्छाई का काम हो सकता था एवरी गुडनेस को आप करने का प्रयास करेंगे, चूक होने की संभावना बहुत ही कम होती है। डिसीजन आपको एक बार में लेना है, हर स्टेशन को समझाना है, एक बार में ही समझाना है।
1: बिल्कुल,
0: उसको बार बार बदली कीजिएगा तो उसको भी दिक्कत होगी, आपका खुद कंफ्यूज हो जाएंगे आपके हमने उसको क्या समझाया।
1: तो क्या लगता है कि जिस पद से आप रिटायर हुए या जो पद से आपने शुरुआत की, आज के जनरेशन के जो लोग उस पद पे कार्य कर रहे हैं, दोनों के बीच में कितना अंतर आ चुका है?
0: पहले के समय में सर ऐसा था कि हम लोग जो भी डिसीजन लेते थे उस पर हर कोई एग्री करता था, आजकल थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि हर आदमी चाहता है कि हमारे मन से काम हो।
1: वो दबाव, वो प्रेशर हमको लगता है कि
0: प्रेशर और बढ़ गया है अभी।
1: अच्छा, बढ़ गया, वो कैसे सर?
0: पहले हम लोग गाड़ी चलाते थे अपनी ड्यूटी में तो मुश्किल से 6-8-10 गाड़ी चलती थी, अभी आप जाइए देखिए एक शिफ्ट में 8 घंटे की शिफ्ट में कम से कम 50-60 गाड़ी निकलती है। काम बढ़ेगा तो प्रेशर तो आपके साथ बढ़ेगा,
1: प्रेशर बढ़ेगा,
0: जिम्मेदारी बढ़ेगी, आपको ज्यादा सचेस्ट रहना पड़ेगा। कितना ही मशीनरी चेक लगाया गया है लेकिन आपका अपना डिसीजन वो सबसे बड़ा होता है।
1: इतनी व्यस्तता नौकरी के दौरान आपकी रही तो परिवार के लिए आप कैसे समय निकालते थे? कहीं ऐसा तो नहीं होता था कि परिवार
0: परिवार के लिए तो थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरह से नजर आते थे। परिवार में अब ड्यूटी टाइम पर जाना है, मान लीजिए हमको 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, और ऑफिस कभी कभी तो नजदीक में होती थी, कभी 8-10 किलोमीटर दूर भी होती थी, वैसे जगह भी हम नौकरी किए हैं। अब वहां जाने के लिए समय पर आपका नाश्ता टिफिन तैयार नहीं हुआ, अब बच्चे भी छोटे छोटे रहते थे तो गृहिणी को ज्यादा उसमें परेशानी होती थी, और उस समय पर अगर नहीं दिया तो हमको तो दिखाई दे रहा है कार्यस्थल कि वहाँ अपने जगह पर समय से मैं पहुंचूंगा तो हर काम को सुचारू रूप से करूंगा।
1: सही बात,
0: इतना ध्यान आपको रखना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हम रखते थे
1: तो संतुलन बना रहता था, परिवार का सपोर्ट
0: भरपूर था। अब आप रह रहे हैं बाहर में।

0: हैं, तो घर वाले तो कोई है नहीं आपके साथ, गृहिणी अकेले बच्चों को संभालना, सब कुछ करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यही सही बात है कि अगर परिवार का सपोर्ट मिलता है किसी भी काम में तो काम बहुत आसान लगने लगता है। नौकरी भी देख रहे हैं, परिवार भी देख रहा है, और काम भी इतना जिम्मेदारी वाला कि जिसमें हमें अपने मानसिक संतुलन को बना के रखना है और स्वयं के निर्णय से दुर्घटना ना हो इस बात का ध्यान रखना है, स्वयं के निर्णय से हमें सही यात्रा को सुरक्षित बनाना है, ये सबसे बड़ी बात है। सर, जीवन में संघर्ष तो हर किसी के हिस्से में आते हैं, जैसा कि हम भी जानते हैं कि संघर्षों से जुड़ा हुआ ही हमारा और आपका सबका जीवन है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे पल आए होंगे जो काफी चुनौतीपूर्ण रहे होंगे।
0: कभी कभी ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को बचाने में हम सफल हुए हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे गाड़ी जा रही है और गाड़ी मान लीजिए कोई हाल से उसका कुछ पोर्शन छूट गया बीच रास्ते में, और उसका डिटेक्शन अगर समय से नहीं हुआ तो पीछे वाली जो अगली गाड़ी आप चलाएंगे अगर उसमें चूक हो गई तो जा करके वहां, ऐसा एक्सीडेंट 2-3 हम बचाए हमारे क्या, हमने त्वरित कार्रवाई करके अपने कंट्रोल रूम से स्टेशन मास्टर को खबर किया कि देखो वहां पर इस तरह की वारदात हो गई है, तुम जो गाड़ी छोड़ने वाले थे उसको रोक दो और उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे करके थोड़ा देर में आदमी चढ़ा करके तब भेजो सावधानी के साथ।
1: बिल्कुल, तो ये मालगाड़ी थी कि
0: मालगाड़ी, मालगाड़ी आगे गई, आगे जा करके डिरेल हो गई, स्टाफ को पता लगा नहीं और वो गाड़ी आगे गई तो हम लोग खबर किए, फिर गार्ड माइन्यूटली चेक किया तो बोला कि हमारा 13 या 15 गाड़ी पीछे छूटा हुआ, तो बच गई तो बच गई।
1: ये सारे कुछ अनुभव तो याद रह ही जाते हैं कि हमने अपने काम को सुचारू रूप से किया ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई भूल ना होने पाए। अच्छा सर, जब आप अब सेवानिवृत्त जीवन जी रहे हैं तो पीछे मुड़कर अपने पूरे सफर को अगर आप देखते हैं तो क्या महसूस होता है, क्या कोई ऐसी बात जिसे आप अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं या जिसे लेकर आपको एक विशेष प्रकार का संतोष मिलता है?
0: जी हाँ, यह हमारे साथ हमने अपने कार्य के प्रति जिस रूप में समर्पित रूप में अपना कार्य किया उससे हमारे अधिकारी या हमारे नीचे के कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वृंद जो हमारे लेवल में थे या हमसे नीचे में थे, वो सब कोई पूरा सेटिस्फाइड थे और उनकी संतुष्टि से हमको बहुत सुकून मिलता है। अभी भी इतना दिन हो गया रिटायरमेंट का, 13 साल के करीब हो गया, फिर भी रिपोर्ट तो मिलता ही है कि किसकी क्या सोच है किसके प्रति, तो हमको बहुत सुकून लगता है।
1: क्या बात है, अगर जिंदगी को फिर से जीने का मौका मिले तो आप इसी पद पर इसी नौकरी में आना चाहेंगे या कुछ और करने का आप मन तो बनाएंगे?
0: भाग्य के ऊपर है कि आप कहां जाएंगे, लेकिन बस चेष्टा ही रहे कि जहां भी जाएं वहां अपने आप को समर्पण करके और पूरी चेष्टा के साथ अच्छाई की तरफ ध्यान दीजिए।
1: तो यही वो काम था जो आप अपने जीवन के लिए सोच के रखे थे या
0: नहीं? ऐसी बात नहीं थी, जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था, जहां सिलेक्शन हुआ वहां हम गए।
1: जैसे अपने मन में कभी कुछ ऐसा था कि मुझे ये बनना था?
0: ना ना, ये नहीं, शुरू में तो मतलब इच्छा दूसरी थी।
1: क्या?
0: जिसे हम मैथमेटिक्स से पास किए थे तो उस समय इंजीनियर बनने की इच्छा थी, लेकिन बाद में हुआ कि डॉक्टरी की तरफ ध्यान दिया जाए तो डॉक्टरी की तरफ जाने के लिए तो बायोलॉजी का क्लियर करना जरूरी था।
1: बिल्कुल,
0: तो इंटर में जाकर के हमने बायोलॉजी को क्लियर किया और 2 या 3 हम MBBS का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है रांची में पटना में अपना जाकर के दिया, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ।
1: लेकिन जो नौकरी मिली पूरी संतुष्टि है और उस काम को आपने सुचारू रूप से किया भी और सेवानिवृत्त भी हुए, ये बड़ी बात है।
0: इसी से तो सुकून मिलता है कि भाई हम जो कुछ किए अच्छाई के लिए किए, सब कुछ इस चीज को महसूस कर।
1: बिल्कुल,
0: इससे बड़ा सुकून और क्या चाहिए,
1: क्या हो सकता है। और अंत में सर हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपको अपने पूरे जीवन को एक संदेश या सीख के रूप में संक्षिप्त में हमसे कहना हो, हमारे श्रोताओं से कहना हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आज की पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में बने?
0: देखिए, जो जहां है आप प्रयास करते रहिए, जहां सिलेक्शन होना होगा वहां हो जाएगा, और जहां सिलेक्शन होता है तो वहां आपको मन लगा करके सब चीज को शुरू में सीखना चाहिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो उस चीज को आप बढ़िया से कर नहीं पाएंगे। जो भी काम करना होगा उसके लिए प्रयास आप बढ़िया से करेंगे तो आप सफल अवश्य होंगे, और प्रयास करना चाहिए आदमी को, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, लगन होगी तो आप सफल होंगे।
1: बिल्कुल,
0: उसको
1: बिल्कुल,
0: कोई रोक नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही बात, अगर लगन होगी तो कहीं ना कहीं जो आपने सोचा है वो मिलता ही मिलता है, ये बात पक्की तय है, बस थोड़ा धैर्य बना करके रखने की जरूरत है। तो श्रोताओं, ऐसे व्यक्तित्व तो वास्तव में वटवृक्ष की तरह होते हैं जिनकी छाया में हमें सीख, प्रेरणा और जीवन की सच्चाइयों को समझने का अवसर मिलता है, जैसे कि हम आज बात कर रहे थे ब्रिजमोहन प्रसाद जी से।
0: धन्यवाद सर
1: जी। तो श्रोताओं,

फिर मिलेंगे इसी वटवृक्ष की शीतल छाया में, जहां अनुभवों की गहराई होगी और जीवन की सच्चाइयों से रूबरू होने का एक और अवसर मिलेगा। तब तक के लिए अपने आसपास के ऐसे वटवृक्षों से सीख लेते रहें, उनकी देखभाल करते रहें। अभी आप सुन रहे थे वटवृक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन के अनुभव क्रम में ब्रिजमोहन प्रसाद से आशीष वर्मा की यह बातचीत। कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी ओपरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन रहे थे जसवंत सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में सुदर्शन फाकिर की ये रचना। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। और लीजिए अब सुनिए अभिजीत को।

समाप्त होता है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक बार फिर हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:30 से। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अनुपमा देशपांडे और मोहम्मद अजीज की आवाज में शैतानी इलाका फिल्म के इस गाने को। इस गाने को संगीतबद्ध किया है बप्पे लहिरी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा उससे पहले आइए आपको एक सूचना देते हैं। हीट वेव के संदर्भ में, हीट वेव के समय शरीर को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। हमें दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। बाहर निकलते समय सिर को ढक के रखें। धूप में अधिक देर रहने से चक्कर, कमजोरी और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए गर्मी के मौसम में सावधानी बरतना आवश्यक है। फिल्म संगीत कार्यक्रम में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में आजा मेरी जान फिल्म से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की पहली रचना गुलाम अली की आवाज में।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। ये रचना अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

श्रोताओं, अनुराधा पौडवाल के गाए इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उभरा से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद रात्रि 9 बजे से अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी

0: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashishth and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under-23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a four-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
3: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
2: Secretary Rubio called Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump as two very serious leaders who are focused on the long term.
3: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
2: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. He said the country is also partnering with the various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ-साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: In the 19th edition of Rozgar Mela today, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations were distributed. Defense Minister Rajnath Singh today inaugurated the artillery shell manufacturing plant established at the Savli Vihir Industrial Estate in Shirdi, Maharashtra. The project, developed by Nibe Limited, will manufacture 155mm artillery shells and has the capacity to produce 5 lakh shells annually. The entire production technology and raw materials used in the project are indigenous. Speaking on the occasion, Defence Minister Rajnath Singh said India was once known as an importer of defence equipment, but in the coming years the country would emerge as a major exporter of defence products. Mr. Singh emphasized that India is preparing itself for future warfare and becoming self-reliant in defense manufacturing through the Make in India initiative.
5: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today informed that Oil India Limited has successfully unlocked a new gas-bearing pay zone in the Dandewala field in Rajasthan. In a social media post, Mr. Puri said the flow of natural gas for the first time from the shallower Sanu formation at nearly 25,000 standard cubic meters per day marks a significant achievement. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said India continues to witness strong economic fundamentals and robust export growth amid global turbulence. He said the pace of export growth recorded in April has continued into May, reflecting the resilience of the Indian economy amid global adversities. Briefing media in New Delhi, Mr. Goyal highlighted that the government has absorbed the burden of elevated fertilizer prices to protect farmers from rising input costs. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by the 5th of next month, citing that the land was required for strengthening defence infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry yesterday stated that the land is essential to fulfil urgent institutional needs, governance infrastructure and public interest project. It said the premises located in a highly sensitive and strategic area of Delhi is critically required for the strengthening and securing of defence infrastructure and other vital public security purposes. The government has published the draft rules under the VBG Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. Our correspondent has the details.
6: The Viksit Bharat G. Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. According to the ministry, the draft rules have been framed in accordance with Section 33 and other relevant provisions of the act. The ministry said that the draft rules, including transitional provisions rules, national level steering committee rules, Central Gramin Rojgar Guarantee Council rules, administrative expenses rules and grievance redressal rules, have been placed in the public domain for consultation. The new act places strong emphasis on timely, transparent and accountable wage payments. The act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
2: The centre has released more than 527 crore rupees under the National Health Mission as the first tranche for West Bengal for financial year 2026-27.

शहरों के छोटे छोटे घरों तक रेडियो की आवाज गूंजती थी। तब आकाशवाणी केवल समाचार या गीत सुनने वाला माध्यम नहीं था, बल्कि लोगों के सुख दुख का साथी बन चुका था। कभी किसानों को दी गई जानकारी, कभी सैनिकों के साहस की गाथा सुनाई आकाशवाणी ने, तो कभी त्योहारों की खुशियां और देशभक्ति के स्वर हर दिल तक पहुंचा आकाशवाणी। समय बदलता गया, तकनीक बदलती गई, लेकिन आकाशवाणी की आवाज आज भी वही अपनापन और विश्वास लिए हुए है जो पीढ़ियों को जोड़ती चली आ रही है। सोचने पर सचमुच एक सपना सा लगता है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा उससे पहले आइए आपको एक सूचना देते हैं। हीट वेव के संदर्भ में, तेज गर्मी में हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, क्योंकि सूती कपड़े पसीना आसानी से सोख लेते हैं और शरीर को ठंडक देते हैं। काले या मोटे कपड़ों से शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसलिए गहरे रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करें। बाहर जाते समय धूप का चश्मा, टोपी और छाता इस्तेमाल करें ताकि शरीर और आंखें सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रह सकें।

श्रोताओ, आज जब दुनिया डिजिटल दौर में तेजी से आगे बढ़ रही है, तब भी आकाशवाणी का महत्व और उसकी आत्मीयता कम नहीं हुई है। यह केवल एक रेडियो स्टेशन नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, संवेदनाओं, सामाजिक एकता की जीवंत पहचान है। कितनी ही सुबह इसकी मधुर धुनों से शुरू हुई और कितनी ही रातें इसकी आवाज सुनते सुनते सुकून में बीत गईं। आकाशवाणी ने हर युग में लोगों के दिलों के छूने का काम किया है, इसलिए इसके वर्षों की यात्रा सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भावनाओं से भरा वो सफर है जो आने वाली कई कई पीढ़ियों को यूं ही प्रेरित करता रहेगा।

यादों के झरोकों से। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये विशेष कार्यक्रम, जिसके आपके लिए पेश किया आशीष वर्मा ने। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी ही देर में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुँच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज एफएम, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड 19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर वी के श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4% कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।

0: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। आईआईटी पटना के निदेशक डॉक्टर टीएन सिंह,
1: यहाँ पर तीन शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, टीबीआई, टीआईएच। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों न केवल आईआईटी पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ आईआईटी, कुछ एनआईटी, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार आईआईटी पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की टेराबाइट में इसकी स्पीड हो, टेराबाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। एआई के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम एआई के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
2: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
3: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोग का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपोजिट्स होता है, सो ये डिपोजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं और उससे क्या है कि अगर आप मटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है प्लास्टिक्स है तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से और

0: मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया, जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
1: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
2: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
3: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपरफूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार,
4: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिक पाए हैं तो इन गुणों के प्रति इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम फॉस्फोरस पोटाशियम पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए जैसे आयरन जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगमता से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
5: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे साथ में ही उसके गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
3: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
6: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाइकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है। तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है, एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाइकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ।

0: आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए, जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर। आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा, महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड 19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
1: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार।
2: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी प्रसित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का आजीवन साथी। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विशेषता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है।
0: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
3: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने। ज्यादा

0: से ज्यादा लोगों तक पहुंचे आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स आईएएस ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
3: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और कर्नाटक संगीत में दो दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वर

0: करने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पी आर कुमार केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपुणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज Changanasheri Madhavan Nambudiri. He is an A-grade vocal artist of Akashwani and a highly respected performer with over two decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Sri Umayal Puram K. Shivaraman, Sri Sri Mushnam Raja Rao, and Sri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Changanasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Sri P.R. Kumara Kerala Varma and Sri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashavani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटेम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री सी पी माधवन नंबूदरी बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंड चापू ताल।

0: अप्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है.
1: The next item is रावे हिमगिरी कुमारी in the राग तोड़ी, set to आदि ताल, composed by श्यामा शास्त्री.

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: That was तनियावर्तनम played on the मृदंगम by विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार and on the घटम by श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottiyam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है, उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: Expanded commercial ties.
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्युआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुगोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह 6:50 पर हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।